सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज रविवार है। शक सम्वत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि तदनुसार 5 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का ये प्रसारण आरंभ होता है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमरीका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति

0: पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। चाणक्य का कथन है, मनुष्य में दूसरों के प्रहार से बचने के लिए कठोर और कुटिल होने का गुण भी होना चाहिए। आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आपने सुनी मातृवंदना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत। स्वर है पंडित भीमसेन जोशी का।

ये भजन आपने सुना किशोरी अमोनकर की आवाज़ में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं कवि नारायण अग्रवाल नारायण का लिखा भक्ति गीत हरिहरन के स्वर में।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अब सुनिए कार्यक्रम प्रकाश किरण में अश्वघोष कृत सौंदरानंद महाकाव्य में बुद्ध का उपदेश विषय पर श्री दामोदर शास्त्री द्वारा व्यक्त विचार।
1: जीवन में श्रेष्ठ क्या है, इस संबंध में महात्मा बुद्ध ने अपने कामासक्त छोटे भाई नंद को जो उपदेश दिया है वह इस प्रकार है।

0: संसार की समस्त धनों में श्रद्धा का धन श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान रूपी रस ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही रस सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। आत्मा का सुख ही श्रेष्ठ है। विद्या के प्रति अनुराग सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध ने मनुष्य का ध्यान आत्मोन्नति की ओर आकर्षित किया है। मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर पापों की ओर प्रवृत्त हो जाता है।
1: तन्निश्चितं भीक्लमशुग्वियुक्तं परेश्वनायत्तमहार्यमन्यै।

मनुष्य को कल्याणकारी शांति के सुख को ग्रहण करना चाहिए। यह वह सुख है जो निश्चित है, भय, ग्लानि और शोक से रहित है। यह सुख दूसरों पर आश्रित नहीं है। आत्मा का सुख ऐसा होता है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इंद्रियों के विषयों से दुख उठाने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हम विचार पूर्वक देखें तो यह सत्य है, जहां भय और शोक है या जो सुख किसी दूसरे पर आश्रित होता है, वह कल्याणकारी कभी हो ही नहीं सकता।

वृद्धावस्था के समान मलिनता अर्थात कुरूपता कोई नहीं है। संसार में रोग के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान भय भी नहीं है, परंतु प्राणी इन तीनों अवस्थाओं को भोगने के लिए विवश है, क्योंकि सुंदर से सुंदर यौवन संपन्न प्राणी वृद्धावस्था में असुंदर और घृणित हो जाता है। निरोगता को सर्वप्रथम सुख माना ही गया है, मृत्यु से बढ़कर तो कोई भय हो ही नहीं सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है, भय और शोक ये जीवन के मूल दुख हैं। अवश्य भावी प्रिय विप्रयोगः

आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज का विषय था अश्वघोष कृत सौंदरानंद महाकाव्य में बुद्ध का उपदेश, स्वर था श्री दामोदर शास्त्री का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर हैं शोभा राव और रविंद्र साठे के।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, और अब सुनिए कृषि सामयिकी की विषय है टमाटर बैंगन मिर्च की रोपाई।
1: इस समय हमारे किसान बहन भाइयों ने जिनने टमाटर बैंगन और मिर्च लगाया होगा, इनकी पौध रोपणी मुख्य खेत में लगाने के लिए तैयार हो चुकी होगी। अच्छी फसल के लिए स्वस्थ और मजबूत पौधों की रोपाई समतल खेत में करें, जिससे कि पानी का निकास अच्छे से हो जाए। टमाटर बैंगन और मिर्च की फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक की मात्रा होनी चाहिए। गोबर की अच्छी पकी हुई खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के मान से देना होगा, और 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फुर और 60 से 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरी होता है। खेत की तैयारी जब आपने कर ली है, तो इसके बाद गोबर की खाद, स्फुर और पोटाश की पूरी पूरी मात्रा मिला दें और नत्रजन की एक तिहाई मात्रा को अच्छी तरह से खेत में मिला दें। नत्रजन की जो शेष मात्रा बची है, उसको दो बराबर भागों में बांटकर 20 से 30 दिन के बाद और 45 से 50 दिन के बाद खड़ी फसल में पौधों के चारों ओर डाला जाता है। ध्यान रखें कि नत्रजन सीधे पौधों पर ना पड़ने पाए, चाहे आप यूरिया के माध्यम से दे रहे हो, चाहे अन्य उर्वरकों के माध्यम से दे रहे हो। अच्छी तरह से तैयार खेत में साधारणतः 4 से 5 पत्ती वाली तैयार पौध, जिसकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो, इसको रोपण के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। रोपाई शाम के समय करें और उसके बाद तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। रोपाई के एक सप्ताह के बाद मरे हुए पौधों के स्थान पर नया स्वस्थ पौधा फिर से लगा दें। कतार से कतार की दूरी टमाटर में 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बैगन में भी यही दूरी रखनी होगी। मिर्च के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। पौध रोपण के बाद हल्की सी सिंचाई करें, जिससे कि पौध अच्छी तरह से वृद्धि कर सकें। जब यदि वर्षा हो रही हो तो आवश्यकता अनुसार ही पानी डालें, क्योंकि अधिक पानी भी नुकसान करता है। खेत में नमी बनी रहे, पानी सूखे ना, इसका ध्यान रखें। वर्षा ना होने की स्थिति में 7 से 8 दिन का अंतराल सिंचाई में पर्याप्त होता है। बार बार हम ये बता रहे हैं कि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। खेत की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। हल्की निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार रहित बनाएं और पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करें। टमाटर की फसल को सहारा देने के लिए व्यवस्था करें, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में फल यदि मिट्टी के संपर्क में

0: आएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। टमाटर में प्रमुख रूप से सफ़ेद मक्खी और फल छेदक कीट प्रकोप करने लगते हैं। तो सफ़ेद मक्खी पौधों की पत्तियों का रस चूस के नुकसान पहुंचाती है और इसके द्वारा बीमारियां भी फैलती हैं, खासकर विषाणु वाली बीमारियां। इसी प्रकार से फल छेदक कीट भी फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए कीटनाशकों का प्रयोग करें, हो सके तो जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें तो अच्छा होगा, जिससे कि सब्जियों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनके सेवन से भी मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीम आधारित, छाछ आधारित और करंज की पत्तियों पर आधारित बहुत सारे जैविक कीटनाशक आप घर में ही बना सकते हैं, उनका प्रयोग करके कीटों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। मिर्च में जो सबसे नुकसानदेह रोग होता है वो होता है पर्ण कुंचन। इसमें पत्तियां जो होती हैं ये छोटी होकर गुच्छा जैसी बन जाती हैं। हमने पहले ही बताया है कि ये जो बीमारियां हैं कीटों से फैलती हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए पहले कीटों को नियंत्रित करें, उसके लिए दवा का छिड़काव कर सकते हैं आप, या जैविक दवाओं का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सब्जियों पे। बीमारियों में यदि देखा जाए तो टमाटर में मुख्य रूप से अगेती झुलसा रोग आता है, पिछेती झुलसा रोग आता है और लीफ कर्ल नामक बीमारियां आती हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए दवा का उपयोग कर सकते हैं। और हम बार बार ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सब्जी की फसलों में प्रयास ये करें कि रासायनिक दवाओं का उपयोग ना करें, उसमें जैविक दवाओं का प्रयोग करें। खासकर गौमूत्र से काफी बीमारियां नियंत्रित होती हैं। रासायनिक दवाओं का प्रयोग जब भी करें तो प्रयोग करने के 10 से 12 दिन के बाद ही फल को तोड़ें, या फिर फल तोड़ के इन रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें।
1: टमाटर, बैंगन, मिर्च की रोपाई, कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी। प्रस्तुति थी विपिन यादव की। मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे हमारा प्रातः सूचनात्मक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। इस कार्यक्रम में चर्चा और फिल्म संगीत के अलावा आपको सुनवाएंगे श्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना, इस विषय पर उप कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश के श्री अंकुर से प्रशांत परमार की बातचीत। सुबह 8:30 पर आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। द्वारका प्रसाद शर्मा के गाए मुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रस्थार में। 9:30 पर सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहण हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 10:20 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जिसमें 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा मुस्कान। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत में 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल 7:30 से दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, जो कि आप सुनेंगे 8:45 तक और उसके बाद 9:15 से खेल की समाप्ति तक। शाम 6:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फिल्मों से लिए कुछ देशभक्ति नगमे। देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत सुने जा सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी आयुषी चौबे। एक बार फिर आपको याद दिला दें, आईसीसी

पहला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल शाम 7:30 से हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्यनिर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनीवैष्णवेन घोषितं यत् 26,000,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकट

0: प्रतिपादितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकासयात्रायाम् एषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार बहरीन कुवैत ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् अगस्तमासस्य त्रयोदशदिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। ICC महिला विंशति प्रतिविंशतिः विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और

फर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000

0: करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4,067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टीविलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सावेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा यह भारत की

जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार करें चमन सालवार का नमस्कार। कल जबलपुर और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी बरसात हुई, बिल्कुल धारदार पानी गिरा और अब लगने लगा है कि बरसात का पूरी तरह से आगमन हो गया है। वैसे मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में अब मॉनसून सक्रिय हो चुका है। देखिए, बरसात को देखने का सबका अलग नज़रिया होता है। कुछ लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, उसका मज़ा लेते हैं, आनंद उठाते हैं, लेकिन जिसकी छत टपक रही हो या कमज़ोर छत हो, ऐसे लोगों को लगता है कि कब बरसात के दिन बीतें और सूखे दिन आएँ। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और मौसम की बात करें तो हर मौसम की कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, लेकिन हर मौसम हमें कुछ ना कुछ सीख भी देके जाता है। वो ये कि दिन कभी एक से नहीं रहते हैं और दिन गुजरते हैं। ये बात ऐसी है कि एक शब्द है जो खुशी और गम दोनों का बायस है, वो ये कि ये दिन गुजर जाएंगे। अगर आप अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये वास्तव में तनाव वाला शब्द है कि दिन गुजर जाएंगे, और अगर आप दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उम्मीद की किरण भी ये शब्द हमें दिखाता है। बहरहाल, उन सब के लिए जिनके अपने अजीज़ उनसे दूर हैं, ये बरसात क्या कहती है, सुने इस गीत में।

0: जोरा अम्बाला की आवाज़ में रतन फिल्म का ये गाना आपने सुना, बोल डी एन मधुक के थे और संगीत नौशाद का। ये वो दौर की फिल्म है जब फिल्मों में काम करने को अच्छा नहीं माना जाता था। और बड़ा मज़ेदार वाक्या नौशाद के जीवन से जुड़ा है, सोशल मीडिया पर ये सारी बातें उपलब्ध हैं कि उन्होंने घर में ये बता रखा था कि मैं मुंबई में टेलरिंग का काम करता हूँ, और उनकी जब बारात सज रही थी तो बैंड वाले रतन फिल्म का गाना बजा रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ये जो दूल्हे राजा हैं ये उन्हीं का रचा संगीत है। बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, अभी एक अहम बात आपको या चर्चा आपको सुनवा रहे हैं जिसका विषय है श्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं उप कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण संगठन श्री अंकुर, और इनसे बात की है प्रशांत परमार ने।
1: नमस्कार श्रोता मित्रों। श्रोताओं, बच्चे और युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। सबको समान रूप से शिक्षा के अवसर मिले और उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई कमी ना रहे, उनके लिए भारत सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती हैं। और ऐसी ही एक योजना जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाई जाती है, ऐसी एक छात्रवृत्ति योजना के बारे में आज हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर के आए हैं। और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में श्री अंकुर जी को। आप उप कल्याण आयुक्त हैं श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे अंकुर जी, कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है जो कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए।
2: मैं आकाशवाणी के माध्यम से श्रम कल्याण संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी श्रोता तक पहुँचाना चाहता हूँ। श्रम कल्याण संगठन बीड़ी खदान एवं सीनियर श्रमिकों तथा उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित करता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि श्रमिक परिवार के बच्चे पढ़ाई बीच में ना छोड़े और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक 1,000 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 5 से 8 तक 1,500 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए

0: अंकुर जी, जैसा कि हम जानते हैं कि योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, क्या आकादमीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के प्रावधानों में कोई बदलाव आया है?
1: जी, इस सत्र में योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके अनुसार अब छात्रवृत्ति योजना को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें चयन मुक्त छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों या मेरिट के आधार पर की जाती है। दूसरी वेलफेयर बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें विशेष वर्गों जैसे बीड़ी, सिनेमा और खदान श्रमिकों आदि के कल्याण हेतु संचालित होती है। इस प्रकार छात्र अब एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ले सकते हैं और साथ ही पात्र होने पर एक या एक से अधिक वेलफेयर बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
0: अंकुर जी, ये योजना तो बहुत अच्छी है। अब इसमें यदि कोई आवेदन करना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, और ये आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, इसकी अंतिम तिथि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: कि आवेदक को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं
0: जी
1: और अपने स्कूल या कॉलेज से ऑनलाइन सत्यापन कराना है। इस
0: जी
1: योजना में आवेदन की प्रक्रिया 1 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है, जबकि कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
0: जी यानी कि प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है आवेदन की। इस योजना के लिए पात्र कौन है और आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताइए।
1: सभी वैध परिचय पत्र धारक बीड़ी खदान तथा सीनियर श्रमिक, जिनके बच्चे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय में कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। और इसके लिए श्रमिकों को परिचय पत्र तथा खदान श्रमिक होने की स्थिति में फॉर्म बी रजिस्टर नंबर, विद्यार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पिछले उत्तीर्ण कक्षा की अंक सूची जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। और एक बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये छात्रवृत्ति हर साल मिल सकती है, यदि विद्यार्थी अगले वर्ष भी पढ़ाई जारी रखता है और हर साल नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है तो।
0: जी, योजना में जो पैसा है वो लाभार्थी तक कैसे पहुंचता है?
1: योजना की राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में DBT, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होती है, के जरिए भेजी जा सकती है।
0: मुझे लग रहा है कि आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है, लेकिन कई बार ये होता है कि आवेदन करते वक्त कुछ लोगों से कभी-कभी कुछ भूल हो जाती है, तो क्या इसमें भूल सुधार की कोई संभावना है? क्या आवेदन जो भरा गया है उसमें कोई सुधार करने की कोई गुंजाइश होती है?
1: जी हाँ, स्कूल, कॉलेज या नोडल अधिकारी के माध्यम से पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार की सुविधा होती है।
0: अच्छा, इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या कोई शुल्क लगता है या कोई राशि ली जाती है क्या इसके लिए?
1: जी नहीं, ये मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आवेदन और उसकी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और किसी प्रकार की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी अंकुर जी, ये तो बात हो गई जो आवेदन करना चाहते हैं या जो पात्र हैं इस छात्रवृत्ति योजना के लिए। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं इस योजना के अंतर्गत?
1: इस प्रश्न के उत्तर में मैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। पहला, जिन विद्यालयों या महाविद्यालयों का अभी तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे अपने संस्थान का पंजीकरण शीघ्र से शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। जब तक संस्थान का NSP पे पंजीकृत नहीं होगा, तब तक उसके विद्यार्थी केंद्र सरकार के विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं सभी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों से अनुरोध करता हूँ कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की ID और लॉगिन आवश्यक रूप से बनाएं और साथ ही सक्रिय हो, उनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण कराएं तथा संस्थान की प्रोफाइल NSP पर अपडेट कराएं। यह व्यवस्था छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन और अन्य आवश्यक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तथा तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालय के प्राचार्यों से आग्रह करता हूँ कि वे पात्र विद्यार्थियों तक इस योजना की जानकारी पहुँचाएँ, उन्हें समय पर आवेदन के लिए प्रेरित एवं मार्गदर्शित करें तथा NSP पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी केवल तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से स्कॉलरशिप

0: लाभ से वंचित ना रहे।
1: जी, बहुत सारे श्रोता और बहुत सारे पात्र जो विद्यार्थी हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी को इस छात्रवृत्ति योजना से संबंधित और जानकारी चाहिए हो तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है?
0: जी, छात्रवृत्ति योजना से संबंधित जानकारी के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 35 बीड़ी एवं खदान श्रमिक कल्याण निधि औषधालय एवं मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के सिविल लाइन्स जबलपुर स्थित मुख्यालय में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक 07614039510 पर भी योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 07614039510 इस पे भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
1: जी अंकुर जी, अंत में हमारे विद्यार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: फिर अंत में मैं सभी पात्र विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं और अंतिम तिथि का इंतजार न करके समय पर अपना आवेदन करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी श्रोता और जो भी अपने आप को इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र समझते हैं वे ज़रूर इस योजना का लाभ उठाएंगे और आकाशवाणी के माध्यम से जो उन्हें जानकारी मिली है उसका लाभ उठाते हुए शीघ्र ही इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी आपका इस स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
0: आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी टीम को भी धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: श्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना, इस विषय पर आप सुन रहे थे उप कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण संगठन श्री अंकुर से प्रशांत परमार की बातचीत। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। दोस्तों, हर बार की बरसात माजी की ना जाने कितनी सड़कों को भिगो जाती है, धुलकर निखर उठते हैं यादों के शफाक दरीचे और मन की चक्करदार गलियां साफ आईने से चमक उठती हैं। एक एक कर गुजरती हैं यादें, दो पल ठहरती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन एक याद ऐसी होती है जिसे मन आगे बढ़ने नहीं देता, इसरार करके रोक लेता है। एक ऐसी याद जिससे खुशी गम दोनों मुब्तिला हैं, जो होंठों पर मुस्कान ले आती है तो आंखों में पानी भी। एक ऐसी बरसात जो बादलों के मोहताज नहीं, जो एहसास की नमी को कभी कम नहीं होने देती।

0: चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सो योर प्लेस और माइन।
7: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
6: कॉन्डम? लेकिन हम तो
7: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV, AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
6: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी जबलपुर से अपने दोस्त चमन सालवार के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

दोस्तों, मन को जितनी भी तरह से परिभाषित किया जाए तब भी बात पूरी नहीं होती। हर बार कुछ नए संदर्भ और अर्थ निकल आते हैं। देखा जाए तो यादों का कब्रिस्तान भी तो होता है मन, जिसमें दफन रहती हैं ना जाने कितनी यादें। इन्हीं के बीच होती है एक खास रिश्ते की मजार, जिसमें अकीदत के दो फूल चढ़ाकर हर शाम शमा रोशन करता है दिल, जिसके पिघलते आंसू बयान करते हैं अपनी हकीकत कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता।

बारिश सिर्फ पानी लेकर नहीं आती बल्कि जिंदगी लेकर आती है, और जिंदगी हमें नज़र आती है अपने आसपास की हरियाली में। लेकिन जब किसी की जिंदगी ही उसे दूर हो तो फिर बरसात के क्या मायने हैं।

बरसात के मौसम में अगर घर में बच्चे हैं तो उनका ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बच्चों में उल्टी दस्त की परेशानी बहुत आम हो जाती है, जो कि संक्रमित पानी से या संक्रमित खान पान से होती है। ऐसे वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उनके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। बहुत सारे मामलों में माता पिता बच्चों को खिलाना पिलाना बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं होती है। बच्चे का खान पान जारी रखें और जितने जल्दी हो सके उसे निकट के चिकित्सालय में ज़रूर दिखा दें।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं, पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और

0: इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना

0: France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, अनजान का लिखा हुआ, स्वर और संगीत बप्पी लहरी का है। फिल्म का नाम है डिस्को डांसर।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हा? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

आशा भोसले, शशि कपूर और बप्पी लहरी की आवाज़ में नमक हलाल फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। बोल अनजान के थे और संगीत बप्पी लहरी का। अगला गीत फिल्म हमराज से।

में कई बार ऐसे मौके आते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप खुद एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो रेडियो सेट के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो क्या एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए मस्ती के साथ ट्रांसमिशन करना चाहिए। और आज मेरे साथ थोड़ा सा मौका भी है क्योंकि आज वो तारीख है जिसके ज़रिए मैं वरिष्ठ क्लब का सदस्य बन गया हूँ, मुझे दाखिला मिल गया है और अब थोड़ी सी बुजुर्गियत भी ओढ़ना पड़ेगी, आदत में वैसे है नहीं,

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में जलीश शेरवानी का लिखा यह नगमा आपने सुना। सुखविंदर सिंह की आवाज़ थी और फिल्म का नाम तेरे नाम।

सुनिधि चौहान के स्वर में चमेली फिल्म का यह गाना आपने सुना और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। वक्त हो रहा है न्यूज हेडलाइंस का, हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सांणंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। नदियां और नाले उफान पर हैं जिससे कई गांवों में जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार सुनीता परमार की चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9 बजे हैं, अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं द्वारका प्रसाद शर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत।

सुन रहे हैं द्वारका प्रसाद शर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। इन गीतों में आपके साथ तबला संगति है सुरेश कुमार पाठक की।

आज के लोक रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे द्वारका प्रसाद शर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। इन गीतों में आपके साथ तबले पर संगत की थी सुरेश कुमार पाठक ने। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:30 होने को है। सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तवां सबनी के मां मनोज सोनी पंजवाणी पारां सिक भरी नमस्ते। साथियों मींहं जी मुंद हली रही आहे ऐं मौको आहे गुरु पूर्णिमा जो। असां सब कोशिश कयूं त हिकु हिकु वण पंहिंजे गुरुनि जे नाले ते ज़रूरु लॻायूं, छो जे वृक्षारोपण अॼु जे समय जी ख़ासि ज़रूरत आहे। पर्यावरण संतुलित रखणु, हवा खे शुद्ध करणु, जल संरक्षण ऐं जलवायु जे परिवर्तन खे घटाइण लाइ वण तमामु ज़रूरी आहिनि। वृक्षारोपण सां मिटीअ जो कटाव घटिजंदो आहे, जंहिंसां जैव विविधता खे वाधारो मिलंदो आहे। वण लॻाइणु हिकु ज़रूरी कमु आहे। इहो पर्यावरण ऐं मानव जीवन ॿिन्ही जे लाइ महत्वपूर्ण आहे। असांखे वधीक में वधीक वण लॻाइणु घुरिजनि ऐं उन्हनि जी देखभाल बि करणु घुरिजे, जीअं असां हिकु स्वस्थ ऐं खु़शहाल भविष्य सुनिश्चित करे सघूं। साथियूं असां ॾिसूं था त अॼुकल्ह घणेई संस्थाऊं इन बारे में कम बि करे रहियूं आहिनि, जीअं त घणेई आयोजन हलाईंदा आहिनि। हिकु वण माउ जे नाले ते, हिकु वण देश जे नाले ते, हिकु वण समाज जे नाले ते। इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे त अॼु जी पीढ़ी वण लॻाइण जे प्रति जागरूक आहे, ऐं इहो निश्चित रूप सां असांजे सुठे भविष्य जी पहल आहे। इन सां असांखे भविष्य में बि सुठी जलवायु, सुठो पाणी ऐं सुठो पर्यावरण मिली सघंदो। इहा हिकु सुठी पहल आहे अॼु जे युवा पीढ़ीअ जे पारां। असां बि इन आयोजन जो हिकु हिसो ठहूं। रुगो इन्हनि कार्यक्रमनि खे ॾिसी करे ख़ुशि न थियूं, बल्कि कोशिशि कयूं त असां बि इन में पूरी पूरी भागीदारी वठी सघूं ऐं वण लॻाइण में पंहिंजो सहयोग ॾेई सघूं।

0: साथियों, ही गीत गायो हो महेश चंदर ऐं सरोज रामचंदानी। हाणे अॻियां वधंदासीं अॼु जी ॿी ॼाण पासे। विश्व जनसंख्या दिवस इहो हिकु अहिड़ो ॾींहुं या कार्यक्रम आहे जेको हर साल 11 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे। इन जो मूल उद्देश्य जनसंख्या सां जुड़ियल समस्याऊं ऐं पूरे विश्व में इन जे प्रति जागरूकता आणणु आहे। इहो आयोजन सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जी गवर्निंग काउंसलिंग पारां शुरू कयो वियो हो। जनसंख्या वृद्धि अॼु जे समय जी हिकु वॾी चुनौती आहे। अॼु जी वार्ता जो विषय बि इन सां ही जुड़ियल आहे, जनसंख्या वृद्धिअ जे करे चुनौतियूं ऐं उन्हनि जो समाधान। अॼु असां सां गॾु वार्ताकार आहिनि भेण किरण वाधवानी जी। अचो त ॿुधूं था इन्हनि खां अॼु जी वार्ता ते ॼाण।
1: साथियूं, सभ खां पहिरीं मां किरण वाधवाणी तव्हां खे सिक ऐं प्यार भरियो जय झूलेलाल थी चवां। अॼु जो असांजो विषय आहे जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान। त अचो त असीं हिन वार्ता खे ॿुधूं। जनसंख्या हर देश जी प्रगतिअ जो संकेत ॾींदी आहे, पर जेकॾहिं इहा ई जनसंख्या नियंत्रण खां ॿाहिरि थी वेंदी आहे त देश जे विकास जे लाइ हिकु गंभीर समस्या थी वेंदी आहे। भारत जहिड़े विकासशील देश लाइ जनसंख्या वृद्धि हिकु जटिल ऐं बहुआयामी चुनौती ठही वई आहे। भारत जे विश्व जो ॿियों सभिनि खां वधीक जनसंख्या वारो देश आहे ऐं इहो अनुमान आहे त ईंदड़नि सालनि में भारत चीन खे बि पुठियां छॾींदो। त इन्हीअ करे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां जनसंख्या वृद्धिअ खां थींदड़ समस्याउनि खां बचणु असांजे लाइ उत्तम आहे। जनसंख्या वृद्धिअ खे पूरीअ तरह रोकणु सवलो त संभव आहे ई कोन, पर जनसंख्या खे नियंत्रण ऐं संतुलित करणु ज़रूरु संभव आहे। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त सरकार, समाज ऐं समाज जो रहंदड़ हर माण्हू पंहिंजी भूमिका ज़िमेदारीअ सां निभाए। इहो हर माण्हूअ जो फ़र्ज़ु आहे जेसी ताईं शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता खे बढ़ावो न ॾिनो वेंदो तेसी ताईं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकणु मुश्किल ई न पर नामुमकिन बि आहे। असांखे इहो सम्झणु घुर्जे, नंढो परिवार सुखी परिवार नारो जेको आहे सिर्फ़ हिकु स्लोगन ई कोन्हे, बल्कि हिकु विकसित समाज जी आधारशिला पिणु आहे। जेकॾहिं असीं हाणे इहो निर्णय न वठंदासीं त सुभाणे हिकु सुरक्षित, संतुलित ऐं विकसित भारत जी कल्पना साकार न थी सघंदी आहे। चुनौतियूं ऐं समाधान। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल समस्या आहे जंहिंजा घणेई कारण बि आहिनि ऐं परिणाम बि आहिनि। उन्हीअ जे समाधाननि जे लाइ शिक्षा ऐं स्वास्थ्य सेवाउनि में सुधार ऐं लैंगिक समानता जहिड़ा कम ज़रूरी आहिनि। जीअं त स्वास्थ्य सेवाउनि में वाधारो करणु, वधंदड़ जनसंख्या जे करे ग़रीबी बि वधंदी आहे ऐं ग़रीबी वधण सां बेरोज़गारी पिणु वधंदी आहे। इहा ग़रीबी ख़ासि करे विकसित देशनि ते ई पंहिंजो असर छॾींदी आहे। स्वास्थ्य सेवाउनि जी गुणवत्ता में कमी ऐं गिरावट बि अची सघे थी ऐं इन जा स्वास्थ्य जी सेवाउनि ते दॿाउ बि पवंदा आहिनि। शिक्षा जी गुणवत्ता में कमी। जीअं जीअं जनसंख्या वधे थी तीअं तीअं शिक्षा जी प्रणाली ते बि उन जो घणेई असर पवे थो। जनसंख्या अगरि वधंदी त सभिनि खे सुठी शिक्षा ॾियणु ॾुखियो थींदो ऐं शिक्षा जी गुणवत्ता बि घटिबी। जागरूकता जी बि कमी। जनसंख्या वृद्धिअ जे ख़तरनि ऐं उन्हनि जे समाधाननि जे बारे में जागरूकता जो प्रचार ऐं प्रसार पिणु सुठे रूप में असांखे करणु घुरिजे ऐं उन्हनि उपायनि खे लागू करे जनसंख्या वृद्धिअ जी चुनौतियुनि जो समाधान करण पिण सरल थी वेंदो ऐं हिकु बहितर ऐं उज्जवल भविष्य पिण ठाहे सघिजे थो। हाणे असां समाधाननि जे बारे में चर्चा कंदासीं। परिवार नियोजन, समाज में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम जेको आहे उनखे बढ़ावो ॾियणु घुरिजे। नंढनि परिवारनि में रहण जी हिदायत पिणु सभिनि खे ॾियणु घुरिजे। गांवनि ऐं शहरनि में परिवार नियोजन जा कैंप पिणु लॻाया वञनि। इहो ॾाढो सुठो तरीक़ो आहे। कैंपनि जे ज़रिए सभु लाभ वठंदा ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे पिणु कंट्रोल में कयो वेंदो। महिला शिक्षा ते ज़ोर, ख़ासि करे युवा महिलाउनि ऐं महिलाउनि जी शिक्षा ते ज़ोर ॾिनो वञे, मतिलबु छोकिरियुनि जी शिक्षा ते इहो पाठ पढ़ाइणु घुरिजे। ऐं महिलाऊं अगरि वधीक मां वधीक शिक्षित हूंदियूं त प्रजनन जी दर में बि कमी थी सघे थी ऐं जनसंख्या जे वाधारे ते कंट्रोल बि करे सघिजे थो। महिला शिक्षा जो ॾाढो रोल जनसंख्या वृद्धिअ में अदा थींदो आहे। आर्थिक अवसर, महिलाउनि खे जीवन यापन लाइ आर्थिक अवसर पिण प्रदान करणु घुरिजनि ऐं हुननि खे पंहिंजे जीवन ते नियंत्रण रखण जी मदद बि करणु घुरिजे। इन सां बि जनसंख्या वृद्धिअ ते कमी थी सघे थी। स्वास्थ्य सेवाउनि खे बहितर करणु, अगरि स्वास्थ्य जी सेवाउनि में बहितर कबो त परिवार नियोजन सां गॾोगॾु मात्र एवं शिशु दर बि घटिबी। अगरि उन्हनि खे सुठियूं सेवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं उन्हनि खे प्रेरित कयो वञिबो त उन जो लाभ बि असांखे मिली सघिबो। लैंगिक समानता, महिलाउनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे ऐं महिलाउनि खे सामाजिक ऐं आर्थिक मसलनि में फ़ैसिला वठण जी छूट बि ॾिनी वञे। हू वधीक सम्झी सघंदियूं इन सां, अगरि हू पंहिंजा फ़ैसिला सामाजिक ऐं आर्थिक स्तर ते पाण खणंदियूं त लैंगिक समानता ते ज़ोर पवंदो ऐं जनसंख्या जी दर पिणु घटिबी। पर्यावरण अनुकूल शहरी नियोजन, साफ़ पाणी ऐं किफ़ायती दर ते आवास मुहैया करणु घुरिजे। हुननि खे सभु सुविधाऊं हुजनि त इन जनसंख्या ते वृद्धिअ खे असां रोके सघजूं था। दीर्घकालिक विकास लाइ टिकाऊ योजनाऊं ऐं समाधान में निवेश करणु घुरिजे। टिकाऊ ऐं बुनियादी ढांचे में अगरि असां निवेश कंदासीं त ॾाढो ज़रूरी थींदो ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकण में असांखे पिणु सवलाई थींदी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वठणु घुरिजे। संयुक्त राष्ट्र संघ जहिड़नि वैश्विक मंचनि जे माध्यमनि सां सतत विकास ॾे ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे लक्षणनि ते पहुचण जी कोशिश बि असांखे पिणु करणु घुरिजे। आर्थिक विकास ॾे बि ध्यानु ॾियणु घुरिजे। शिक्षा ऐं कौशल विकास ते सभिनीनि जो ध्यानु केंद्रित करणु घुरिजे ऐं आर्थिक रूप सां सभिनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे। तब असांजी इहा समस्या हल थी वेंदी। शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिजे। अगरि शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिनी वेंदी त बि असांखे इन्हनि समस्याउनि खां मुक्ति मिली सघंदी। जो शिक्षित माण्हू आहे उहो सही निर्णय वठी सघंदो आहे। जनसंख्या वृद्धिअ जूं चुनौतियूं, हाणे असीं चुनौतियुनि खे ॿुधूं था। वधंदड़ जनसंख्या जे करे रोटी पाणी ऐं ऊर्जा सां गॾोगॾु अटे अझे ऐं लटे जी समस्या पिणु खड़ी थी वेंदी आहे, जंहिं करे जीवन यापन करण में जे संसाधन खे उन्हनि कमियुनि जो सामनो पिणु करणो पवंदो आहे। पर्यावरण जो प्रदूषण, असीं सभु ॼाणूं था जनसंख्या जे वाधारे करे पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो आहे। जेतिरा वधीक माण्हू ऐं जेतिरी वधीक जनसंख्या हूंदी ओतिरो ई वधीक कचिरो ऐं गंदगी बि हूंदी, पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो। ऐं ॾाढी गंदगी बि थींदी ऐं इन चुनौतीअ जो बि असांखे ई सामनो करिणो पवंदो। हाणे असीं पहुचूं था इन जे निष्कर्ष ते, त निष्कर्ष छा थो निकिरे। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल सामाजिक ऐं आर्थिक समस्या आहे, जंहिंजो समाधान सिर्फ़ कानूननि सां ई न थींदो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता जे सामूहिक प्रयासनि सां ई संभव थी सघे थो। यदि संभव हूंदे प्रभावी कम न कया विया त प्राकृतिक संसाधननि जी कमी ऐं जीवन स्तर में गिरावट जहिड़ियूं गंभीर स्थितियूं पैदा थियण में देर न लॻंदी, जंहिंजो सिधो असर असांजे मथां थींदो आहे। जय झूलेलाल।
0: जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान, अॼु जी इहा वार्ता हुई। वार्ता पेश करे रहिया हुया भेण किरन वाधवानी जी। तमामु सुहिणी ऐं सवले अखरनि में ॼाण जनसंख्या वृद्धि जे प्रति। हाणे अचो साथियूं, ॿुधूं था ही गीत।

0: हीउ गीत गायो हो कमला केसवाणी ऐं संगीत हो सी अर्जुन जो।
1: साथियों, हिन गीत खां पोइ जेका ॼाण आहे सा आहे अल्पसंख्यकनि जे लाइ सरकारी योजनाउनि जे बारे में। अल्पसंख्यकनि जे लाइ भारत सरकार घणेई योजनाऊं हलाए रही आहे, जीअं त पीएम विकास योजना जेका जुड़ियल आहे कौशल ऐं उद्यमता सां, प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पढ़ण वारे ॿारनि जे लाइ मैट्रिक करण जे लाइ छात्रवृत्ति सां जुड़ियल आहे हीअ सरकारी योजना, ऐं ऋण योजनाऊं यानि जेके लोन थो मिले कर्ज़ो थी ॾिए सरकार उन्हनि सां जेका जुड़ियल योजना आहे सा आहे NMDFC। इन तरीक़े सां घणेई योजनाऊं सरकार पारां अल्पसंख्यकनि जे उद्धार जे लाइ, जीवन में सुधार जे लाइ, शिक्षा ऐं रोज़गार खे वधाइण जे लाइ हली रहियूं आहिनि। अल्पसंख्यक वर्ग पंहिंजा ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करे संबंधित कार्यालय मां इन्हनि योजनाउनि जो फ़ाइदो खणी रहिया आहिनि ऐं अॻिते बि खणी सघनि था। साथियों, सरकारी योजनाउनि सां ई हिकु जुड़ियल ॿी नंढड़ी ॼाण आहे जंहिंजो नालो आहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG RAM जी। दरअसल दोस्तों, जेका मनरेगा नाले सां सरकारी योजना आहे उन जी ही जॻहि ते 1 जुलाई 2026 खां वठी इन VBG RAM जी योजना स्थान वरितो आहे। इन में मज़दूरनि जे लाइ साल में 125 ॾींहनि जी मज़दूरीअ जी गारंटी ॾिनी वेंदी आहे। साथियों, इन सरकारी योजनाउनि जी ॼाण खां पोइ अचो त ॿुधूं था हिकिड़ो ई मज़ाकिया ॿारनि जो गीत।

साथियों, ही गीत गायो हो भगवंती नावाणी ए साथियों, इन गीत से गड ही अज जे कार्यक्रम जो समय भी पूरो थी रहयो आहे। इजाजत दियो पंहिंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणी के, वरी मिलंदासे। सब जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है गणेश कुमार बाविस्कर का। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है और राजघाट के 3 शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एसडीआरएफ की टीमें घाटों पर तैनात हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ताप्ती के तेज बहाव को देखते हुए गुजरात के सूरत प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुरहानपुर में साइबर ठगों की चाल नाकाम करने के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान तेज हो गया है। बीते दिनों शाही जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम समाज के बीच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ओटीपी, यूपीआई और केवाईसी फ्रॉड के नए हथकंडों के प्रति सावधान किया। पैम्फलेट बांटे गए और साइबर शपथ दिलाई गई और चेतावनी दी गई कि अनजान लिंक पर एक क्लिक से बैंक खाता खाली हो सकता है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगा दिखाई दिया, जब 191 वरिष्ठ श्रद्धालुओं का जत्था जय माता दी के गगनभेदी जयघोष के बीच वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ। विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल ने श्रद्धालुओं को पुष्पमाला पहनाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 से 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की हैं। बुरहानपुर पहुंचे निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में लंबित मामलों, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, संपत्ति अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान बेहतर पुलिसिंग पर बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बैठक में थाना प्रभारियों को ई विवेचना के लिए टैबलेट वितरित किए गए, जिससे जांच प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत बुरहानपुर जिले के 163 हितग्राही परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की। सिंगल क्लिक के जरिए बीते दिनों 3,46,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे डीबीटी से बैंक खातों में भेजी गई, जिसमें सामान्य मृत्यु के 153 और दुर्घटना मृत्यु के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिला मुख्यालय के एनआईसी कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सपनों के पंख दे रही है। पात्र हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले की समीक्षा बैठक में बीते दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, ईकेवाईसी, आधार अपडेट और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा गया कि तय समय सीमा में सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बीते दिनों सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ व्रत रखा। शाहपुर में महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और विधि विधान से वट पूजन कर पति की बरगद जैसी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान भक्ति परंपरा और सुहाग का अनुपम संगम देखने को मिला। बुरहानपुर में भाजपा के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़े के तहत स्वामी परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा, योगदान और राष्ट्रहित में उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में कृषि चौपालों का आयोजन कर खेती की आधुनिक व प्राकृतिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्नत बीजों की थैलियों की आकर्षक ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में डीएपी, बीज, उर्वरक उपलब्धता और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है
2: और मीडियम वेव पर अब हैं आप आकाशवाणी जबलपुर के साथ। 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की 1.5 सदी।

नमन मातृभूमि को, जिसने हमें भारतीय होने के सम्मान से नवाजा और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव से विभूषित हमारा देश मानवीय मूल्यों और सर्वधर्म समभाव की मजबूत परंपराओं का वाहक है। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:10 होने को है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की प्रशंसा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप, बिजली आपूर्ति प्रभावित। और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जकार्ता में इंडिया क्लब के अध्यक्ष सिद्धार्थ टपाड़िया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे।
1: पूरे इंडोनेशिया में न केवल जकार्ता में एक उत्साह की लहर दौड़ रही है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं इंडोनेशिया, तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 200 वॉलंटियर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी से आ रहे हैं अपना कल्चर डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। इसके अलावा जकार्ता से बाहर से बहुत सारे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेडान हो, बाली हो, सुराबाया हो या समारांग हो।
0: इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देश और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 जुलाई तक की इस यात्रा में डॉक्टर जयशंकर विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार कल से तेहरान में शुरू हो गए। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर दलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेडिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदेवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि है वे अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा है कि देश में भूकंप से मृतकों की संख्या 2954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हैं। लगभग 16,000 लोग बेघर हुए हैं। देश में एक सदी से भी अधिक समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान अब भी जारी है। इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के शोक की घोषणा करते हुए कहा कि विनाशकारी भूकंप से हुई जान माल की हानि से पूरा देश सदमे में है। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिससे राजधानी कराकस में कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के झटके वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू का प्रकोप जारी है, इससे बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण फीफा फुटबॉल विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमरीकी मौसम विभाग ने कहा है कि बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 44 डिग्री और वाशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। इसी पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माली की सेना ने कहा है कि विद्रोहियों ने उत्तरी इलाकों के गांव और सिवारे कस्बों को निशाना बनाया है। एक विद्रोही गुट के उत्तरी इलाके के एक कस्बे पर कब्जा करने के लिए नए हमले का ऐलान करने के बाद यह बयान आया है। आजाद लिबरेशन फ्रंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादी एनिफिस कस्बे को निशाना बना रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में पैराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले टेक्सास में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 की शानदार जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट की बात करें तो मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर ही 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब बात टेनिस की। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना राय बकीना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वेटेक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में रूस के रोमन सफियोलिन से मुकाबला होगा। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानी सेनर का सामना जापान के शिंतारो मुजुकचुकी से होगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 4 खाड़ी देशों और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये सफर आप तय करेंगे अपने दोस्त चमन सालवार के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार। हर दिन वक्त के जेवर का एक खूबसूरत नगीना होता है और यह हमारे हाथ में होता है कि ये नगीना कितना चमकदार होने वाला है। परिस्थितियां किसी के भी अनुकूल नहीं होती हैं, हमें इन विपरीत परिस्थितियों के बीच से अनुकूल रास्ता तलाशना पड़ता है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सब कुछ अनुकूल होता है और वक्त का पता नहीं चलता कैसे बीत जाता है, कैसे गुजर जाता है। बहरहाल आज के इस खास दिन को सुरीला बनाते हैं कार्यक्रम के इस पहले गाने के जरिए जिसे सुनना चाहा है। बंडा बेलई सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, दीपेश, लल्लू हल्ले, ऋषि रैकवार और उनके परिवारजन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन गवाणकर, बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर। ये गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में है, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम है पराया धन।

और दोस्तों जहां तक झूमने गाने की बात है तो उसके लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जिया जब झूमे सावन है, ये गाना तो कहता ही है। बहरहाल अगले गाने के फरमाइशकर्ताओं के नाम आपको बता दें, कंवर कॉलोनी बड़वाह से हैं प्रवीण शिमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। बहादुरपुर रद चौक जड़गांव से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़कवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। ये गाना महालक्ष्मी अय्यर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में है, गीत मनोज तापड़िया का, संगीत जयेश गांधी का, फिल्म का नाम है मनोरमा 6 फीट अंडर।

जहाँ तक सवालों से बचने की बात है तो उसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती है, बस परीक्षाएं बदल जाती हैं। हम कभी स्कूल में परीक्षाएं देते हैं, कभी कॉलेज में परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद ज़िंदगी की शुरुआत होती है और फिर असली परीक्षा शुरू होती है जीवन की। एक ऐसा प्रश्न पत्र जिसके सवाल सबके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन जवाब देना, उन्हें हल करना, उसका समाधान निकालना लाजमी होता है। अगले गाने की बात करते हैं। ये गाना हमारे इन श्रोताओं ने सुनना चाहा है। कानीवाड़ा सिवनी से हैं संध्या चौरसिया और विजय चौरसिया। बरगीनगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर राजेश, शिवम शुभांग और सृष्टि गदरे। भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, देवरी से केआर साहू और दतरेंगी से भाग

मोहम्मद वर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। ये गाना के की आवाज़ में है, समीर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

दोस्तों, जहाँ तक जिंदगी की बात है तो हम सबसे संजीदगी की उम्मीद जिंदगी करती है कि हमें अपने काम गंभीरता से करना चाहिए, जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे परिवार की देखभाल हो या खुद की देखभाल हो या सेहत की देखभाल हो। लेकिन आपको नहीं लगता है कई बार हम कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से जिंदगी को ले लेते हैं। मान लीजिए सेहत की देखभाल की बात है तो कम मिर्च मसाले खाना अच्छा होता है, तेल मिर्च मसाला का कम सेवन अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उबला खाना शुरू कर दें। जीवन में रस की गुंजाइश हमेशा बची रहना चाहिए और उसके लिए बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया है, वो मध्य मार्ग कहलाता है। बीच का रास्ता यानी बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं और बहुत ज़्यादा अति भी नहीं। बहरहाल, कार्यक्रम का अगला गाना जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। गुलजार ने इस गाने को लिखा, AR रहमान ने संगीतबद्ध किया और आवाज़ दी है श्रीनिवास ने। फिल्म का नाम है युवराज। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप सब हैं, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, सदर जबलपुर से हैं लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही और सृष्टि राही, बिरसिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई और विकास सिंह साथ में हैं, ओम प्रकाश और शुभम विश्वकर्मा, हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हैं ये, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया, दूलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज का जलसीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलबीर सिंह। और ये चिट्ठी है हमारे श्रोता जो कि अंबेडकर चौक खुरई में रहते हैं, राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी, LP रोहित, लल्लूराम, पूनन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनके परिवारजनों की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरवराज, फरदीन, सोहान, अरजान और अबान अब्बासी। भूर चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। सुनते हैं युवराज फिल्म का ये नगमा।

खरकबेल गोटेगांव नरसिंहपुर से कमलेश कहार, कविता कहार, कल्पना अंकिता, अंकित नमन, मनीष, पार्वती नम्रता, बादल आकांक्षा, आकाश, वर्षा, कैलाश चंद्र जैन और दीपक सोनी, करकबेल रेलवे कॉलोनी से राम स्वरूप सराठे, सूरज सराठे, पवन, श्रीमती सपना, अनिरुद्ध, अन्नया, लता और परिवार के दोस्त, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, खापरखेड़ा रायसेन से तुलसी राम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता और गोमती, डोगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, अम्बेडकर चौक खुरई से हमारे बहुत सारे श्रोता हैं राम सखी परमानंद और उनके परिवारजन, बोरखेड़ा पित्रमल, उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूड़त, पिंडरई जिला मंडला से कमला प्रसाद शर्मा, संजय जैन, सुमत कुमार

हुसैन मोहम्मद मोहराली और राधेश्याम केवट, बेरडी से राजेश सोनी कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनीकर और धीरज सबाशेरे, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलगमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और शान ने, गुलजार के बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत है। फिल्म का नाम है यहाँ।

इसी गाने के लिए हमें चिट्ठियां प्रेषित की आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शाहिना और निवान शर्मा ने। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान और इल्मा खान ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। और अब आपके अपने इस कार्यक्रम से चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। आपका दिन बेहतर बीते, सरों की फुहार यूं ही जिंदगी में होती रहे और आपका जीवन सराबोर रहे। स्वीकार करें चमन सालवार का नमस्कार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:58 होने को है। इस वक्त आप सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस, हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस रक्षा संयंत्र से विकास को गति मिलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान में कल इथेनॉल मामले में कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है और सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रख्यात लोक कलाकार और पंडवानी गायिका तीजनबाई का आज तड़के रायपुर में निधन हो गया। महान लोक गायिका ने पंडवानी को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उन्हें 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भोपाल के भारत भवन में गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: दिल से निकली है जो बात वो गानों में ढल जाती है, और जब जुड़ते हैं आप और हम तो महफिल खुद ब खुद बन जाती है। श्रोताओं नमस्कार, इस सुरीले सफर की हम सफर हूँ मैं आकांक्षा आपके साथ। स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। श्रोताओं संगीत वो जादुई डोर है जो सीधे दिल को छूती है। कभी कोई धुन हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी कोई पुराना नगमा

0: पुरानी यादों के गलियारों में ले जाता है। लेकिन ये सफर तब तक अधूरा है जब तक इसमें आपकी पसंद और आपकी आवाज शामिल ना हो। सुर हमारे, आवाज आपकी और बातें दिल की। जी हाँ, तो फोन उठाइए। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो अपने कॉल्स का सिलसिला शुरू कीजिए, हम हैं आपके साथ आपसे बात करने के लिए। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
1: जी। दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारी बात किन से हो रही है?
1: जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर से।
0: लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है।
0: मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम दीदी कल बारिश हुई थी सुबह के टाइम 10 बजे पे, तो अच्छी बारिश हुई थी
0: जी।
1: और अभी उमस थी, तो बारिश से जो कि उमस थी तो गर्मियों से राहत मिली है और थोड़ी बारिश हुई थी, बादल छाए हैं, हो सकती है कई बारिश हो सकती है, माने ज्यादा उमस भी है, तो बस हम तो यही आशा करेंगे मैम के पानी बरस जाए, खेती बाड़ी का एक कार्यक्रम है वो चालू हो जाए।
0: जी बहुत जरूरी है खेती के लिए, हम सभी के लिए पानी का होना। आपका दिन कैसा चल रहा है अभी?
1: बिल्कुल बढ़िया चल रहा है दीदी, अपन कृषक हूँ तो खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, तो खेती बाड़ी का काम चल रहा है, धान की खेती की तैयारी चल रही है दीदी, और बस धान लगने वाली है दीदी, 8-10 दिन बाद फिर धान लगेगी।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज दीदी फिल्म का नाम है सिंदूर, उसका एक गीत है, नाम सारे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे।
0: इस गीत से जुड़ी कोई याद है, कोई बात है?
1: नहीं दीदी, क्या है दीदी, 19 के जो गीत है
0: जी
1: मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे शब्बीर कुमार हुए, मोहम्मद अजीज हुई
0: जी,
1: तो इनके गीत बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे ये गीत मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर जी ने गाया है। लीजिए सुनिए तो अपनी पसंद का ये गीत। नमस्ते,
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन जुड़े हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान, गांव का नाम अंतरल बुगला।
0: पूरन जी, वहाँ मौसम कैसा है राजस्थान में?
1: बस मैडम बढ़िया है, यहाँ मौसम बादल छा रहे और रात को बारिश हुई थी मैडम थोड़ी बहुत, खेतों में भी बिजाई चालू हो गई है।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं, कल खेतों में भी बिजाई हो गई, खेतों में बुआया, खेतों में वो करा दिया, खेतों में नाच पड़ दिया मैडम बाजरा।
0: अच्छा, अन्नदाता हैं आप हमारे, अपना ध्यान रखिएगा, फसलों का ध्यान रखिएगा। और आज बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली और उसमें एक गाना गाने के बोले तारा रा रा रा रा ऐसा कुछ गाना है।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: संगीत से जुड़े आपके मनपसंद फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: मैं काव्या बात कर रही हूँ। काव्या?
0: काव्या कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं सतना जिले से बात कर रही
0: हूँ। सतना से। काव्या क्या करती हैं आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ।
0: आवाज लग रही है आपकी कि आप स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं?
1: मेरा इस साल 12th है।
0: अरे बोर्ड एग्जाम जी, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी?
1: मैम तैयारी तो सही है, बस मैंने आज फर्स्ट बारी कॉल किया है।
0: कॉल किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉल भी लग गया तो आपको तो खुशी बहुत हो रही होगी।
1: बहुत खुशी हो रही है। आप कौन बात कर रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।
0: गब्बर इज बैक जी। इस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: तेरी मेरी कहानी, बारिशों का पानी।
0: तो बारिश के मौसम के लिए ये गीत सुनना चाहती हैं या इस गीत से जुड़ी कोई आपकी याद है?
1: बरसात का मौसम आ गया इसलिए।
0: ये गीत आपको पसंद है? ठीक है। काव्या जी किस सब्जेक्ट से आप 12th कर रही हैं? क्या लिया है आपने?
1: मैं बायो।
0: बायोलॉजी साइंस लिया है आपने। डॉक्टर बनेंगी?
1: जी।
0: ठीक है, तो आपके आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ये हमारा विश्वास है।
1: आपने Thank you, ma'am.
0: आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: Thank you.

0: हेलो।
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
0: ओम प्रकाश प्रजापत बोल रहा हूँ मैडम।
1: ओम प्रकाश प्रजापति जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
0: जिला खरगोन, तहसील भगवानपुरा, ग्राम पंचायत दुलकोट से बात कर रहा हूँ।
1: खरगोन, मध्य प्रदेश।
0: जी मैडम।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैडम। पानी, बारिश हो रही है, आज रात भर भी हो गई है और अभी भी बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे।
1: बारिश का आनंद ले रहे हैं?
0: जी मैडम, अभी घर पे ही है।
1: अच्छा, आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
0: गाना सुना दिए जी, ब्लैकमेल फिल्म का, पल पल दिल के पास।
1: ठीक है, लीजिए तो अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। नमस्ते।
0: जी मैडम।

0: हेलो, नमस्कार।
1: कालीचरण यादव, ग्राम संदलपुर आत्री से।
0: कालीचरण यादव जी,
1: जी,
0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: अच्छा मैडम, आप कौन बोल रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: गाना सुनने के लिए तो आपने फोन किया है, गाना तो
1: जी
0: हम
1: जी
0: आपको सुनवाएंगे ही क्योंकि आज कार्यक्रम यही है। पहले आपसे बात तो कर लें हम।
1: हाँ, बात कर लो आप।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छी मैडम,
0: अच्छे हैं। कैसा समय बीत रहा है इस समय आपका?
1: समय बीत रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है मैडम,
0: बारिश का मौसम है? बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश बहुत हो रही है, बहुत बारिश हो रही
0: अच्छा, तो मौसम तो सुहावना होगा ना कालीचरण जी।
1: है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। मौसम मौसम ठंडक है पर गर्मी ज्यादा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पे पान की खेती करता हूँ, गाँव में रहता हूँ, संदलपुर गाँव आखिरी पास गाँव मैडम मेरा, ग्वालियर पास में
0: अच्छा,
1: पान की खेती करता हूँ, देसी पान होता हमारे गाँव में। जी,
0: तो पान के शौकीन लोगों को, लोगों तक अच्छे अच्छे पान भिजवाते हैं आप?
1: हाँ, खिला दे पान उनको।
0: हाँ जी। अच्छा, आज पसंद बताएं अपनी क्या सुनना चाहते हैं?
1: जीवन मृत्यु पिक्चर गाना सुनवाना, चिल मिल चिल मिल सितारों का आंगन हो।
0: आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र जी,
1: जी मैडम,
0: उज्जैन से कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आकाशवाणी भोपाल से जुड़े हुए रहते हैं। और हम तो भोपाल आकाशवाणी को आज से नहीं, करीब 25-30 सालों से सुन रहे हैं मैडम।
0: तो बस हम चाहते हैं ये आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: जी मैडम जी, अब तो अच्छा लगता है, अब तो आकाशवाणी भोपाल DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। पहले हम रेडियो पर सुनते थे पुराने दौर में,
0: जी
1: अब रेडियो का धीरे धीरे जैसे कह चलन तो बहुत है, पर अब रेडियो पे कम सुनाई देते हैं। अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आपके प्रोग्राम की मतलब जो अपडेट मिलती रहती है फेसबुक पर हमें
0: जी
1: प्रोग्राम की।
0: डिजिटलाइजेशन होने के कारण देखिए कितना फायदा है कि दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं।
1: जी जी मैडम जी, और अच्छा लगता है, कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपके, फोन करें गीत सुने वह भी अच्छा लगता है, और ये फोन वाले प्रोग्राम हैं और जो भी परिचर्चा आती है सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं मैडम।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है लोकेंद्र जी?
1: मैडम जी, अधिकतर तो मैं फोन वाले प्रोग्राम सुनता हूँ, और एक बात, आपकी गीत हमारे वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विषय, अलग अलग विषय आते हैं ना,
0: जी
1: उस पर परिचर्चा होती है, सभी श्रोता मित्रों की विचार विचार सुनने को
0: जानने को
1: मिलते
0: मिल
1: हैं,
0: जाते हैं। जी
1: जिसमें बात श्रोता मित्रों की रहती है और गीत आपके रहते हैं।
0: हाँ जी, तो मतलब आपको फोन इन प्रोग्राम ही ज्यादा पसंद है।
1: जी जी मैडम जी, बिल्कुल।
0: जी तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए।
1: ये गाना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब, ये नसीब गोविंदा वाली है। हाँ,
0: अच्छा,
1: इसमें गाना है शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं।
0: तो ये सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं, इसके पीछे की कोई वजह है?
1: मैडम जी, बहुत जगह मैंने ये गीत की चॉइस की है पर मुझे कहीं गीत मिला नहीं, पर मैंने आज सोचा कि भोपाल आकाशवाणी पर फोन लगेगा तो यह गीत की चॉइस करूंगा।
0: अच्छा,
1: और ये तो कुछ दोस्त भी है मेरे,
0: हाँ जी, नाम लीजिए उनका, बताइए।
1: राम राम बाबू मालवी जी है भोपाल से, प्रेम सिंह जी हैं और भगवान सिंह जी हैं और शारदा प्रसाद जी।
0: ठीक है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, और साथ ही आपके सभी दोस्त भी इस गीत का आनंद लेंगे।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हाँ नमस्ते मैम,
0: नमस्ते।
1: हम बोल रहे हैं पंडित शिवनारायण तिवारी सागर से।
0: शिव नारायण तिवारी जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है। मौसम बढ़िया है।
0: हाँ जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है। तो मौसम का आनंद कैसे ले रहे हैं आप?
1: अरे बहुत बूंदाबांदी होती है, कभी अच्छी हवा चलने लगती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है। बिल्कुल
0: जी, ऐसे में कभी आपको काम पे तो निकलना ही पड़ता है, फिर आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल जाना पड़ता है।
0: जी, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आज सुनवाना आप बेताब फिल्म का बादल क्यों गरजता है।
0: मौसम से रिलेटेड गाना ही आज आप सुनना चाहते हैं?
1: जी
0: तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का फिल्म बेताब का ये गीत।
1: जी
0: नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोन के उस पार कौन है, हमारी किन से बात हो रही है, अपने बारे में बताइए।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी, आप नियमित श्रोता हैं हमारी, कैसी हैं आप?
1: कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप ना हमारी पसंदीदा अनाउंसर में से एक है।
0: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सभी अनाउंसर्स आपकी पसंदीदा हैं, क्योंकि आपकी सभी से बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। रानू जी, मौसम कैसा है वहाँ देवास में?
1: आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो बारिश के इस मौसम में कुछ खास कर रही हैं आप?
1: कुछ खास तो बस शाम को एक शादी में जाना है इंदौर,
0: जी।
1: तो बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ।
0: शाम की शादी की तैयारी अभी सवेरे से?
1: आज मतलब जो मेरी भांजी है उनकी शादी तो हो चुकी है, बट रिसेप्शन है तो जाना है शाम को, बस उसी में लगी हुई हूँ।
0: ठीक है, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए।
1: मूवी का नाम है खट्टा मीठा, और गाने के बोले आइला रे आइला, क्योंकि ये जून का महीना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब एकदम हरियाली हरियाली छाती है।
0: हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। ये गीत आपको क्यों पसंद है रानू जी?
1: थोड़ा डांस करने का मन कर रहा।
0: आहा, शाम को है भांजी का रिसेप्शन, उसकी तैयारी में डांस का मन कर रहा है आपका, हमें तो यही लग रहा है।
1: थैंक यू मैम।
0: रानू गुप्ता जी, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं तेजस्वी चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाली बोल रहा हूँ। फोन करेगी सुने?
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ बहुत बढ़िया हूँ मैडम जी। और यहाँ बहुत बड़ी मस्त बारिश हुई है, बढ़िया
0: जी
1: खतरनाक।
0: खतरनाक।
1: हाँ बहुत मजा आ गया।
0: चलिए ऐसे ही आनंद आप लीजिए इस मौसम का। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: चलो सजना जहाँ तक घटा चले। हाँ
0: जी ये गीत है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का।
1: मैडम जी बड़ो मेरे हमदम मेरे दोस्त।
0: जी बिल्कुल, ये गीत
1: हाँ
0: आप तक पहुंच रहा है बस कुछ ही देर में। नमस्ते श्रोताओं, वक्त का पहिया चलता रहता है और खूबसूरत लम्हे यादों में बदलते रहते हैं। बातें तो दिल की खत्म नहीं हुई, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपसे अनुमति लें। जी हाँ, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का ये सुरीला सफ़र और आपकी प्यारी प्यारी बातें और लाजवाब गानों की फरमाइशें, सच मानिए आज का दिन आप सबने बेहद ख़ास बना दिया है। ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति थी आकांक्षा की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत के रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज सुबह रायपुर के एम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दौरे पर हैं और प्रदेश में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत जीआरपी भोपाल द्वारा कल 5 किलोमीटर साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन कर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं के पसंद का फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया आपकी कसम फिल्म से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने। सुना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। बेमेतरा से ये पत्र आया सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुना चाहा है बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, फेरन यादव, शेख मुनीर मंसूरी और ग्राम पहरूरा से ये पत्र आया राम कुमार लोधी और संजय पुरी का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है मनहर का गाया, निदा फाजली का लिखा, उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया ये गाना, जिसे हमने लिया आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत की फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा और साहिल ने इनकी पसंद है सागर फिल्म का गीत जिसे आवाज़ें दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभिनेत्री, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद पंकज प्रमोद रोहित और मोहित ने। नेपाल पैलेस सागर से ये पत्र आया है, तिलक राणा मीना राणा मोनिका नूपुर ऋषिका और रॉबिन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को लिखे हुए संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी अभिनेत्री। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
2: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक,
5: दिल करे हाए, हाए। कोई ये बताए क्या होगा,
6: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
4: और
6: फिर लें आनंद इस मौसम का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: पानी की हर बूंद है अनमोल,
3: बहने ना दें इसे बेमोल।
2: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
3: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
4: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 4।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिसमें मैं सफर कर रहा था, वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी कि 50 की थी कि 100 की थी, इसका अंदाज जरा देखिए। चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हैं हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो जरूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई, थोड़ा सा जंगली एरिया आया। जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, ये ट्रेन

रुक क्यों गई है? लगता कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा, वो भैंस कट गई है क्या? कह नहीं साहब, कट नहीं गई है, वो खड़ी हो गई है। तो फिर क्या किया जाए? वो कह साहब, रेलवे के जो गार्ड हैं

तो एक सज्जन बोलते हैं कि ले वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना, वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे, साम दाम दंड भेद, भाई सफर तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफर था हमारा, चली जा रही ट्रेन, बड़ा मजा आया, गर्मी बहुत हो रही थी। अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई, हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे जो हाथ से चलते हैं, वो वाले पंखे लेके आवाज लगा रहा था।

वाला पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, घंटे 4 घंटे का सफर है, पंखा ले लिया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के? एक है 4 आने का, दूसरा है 8 आने का। हमने कहा भाई एक काम कर, 2-4 घंटे के लिए कौन पैसे ज्यादा खर्च करे, तू एक काम कर 4 आने वाला दे दे। तो उसने मुझे 4 आने वाला पंखा दे दिया। हम बड़े खुश कि चलो कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी। ट्रेन जब चलने को थी, बस उसके 2 मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूं तो क्या देखता हूं, आधा मिनट भी वो पंखा नहीं चला, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का वो पूरा का पूरा जमीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, ये तो टूट गया 2 मिनट, 1 मिनट में भी टूट गया। मैंने फौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, मैंने जैसे ही इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था? मैंने कहा भाई 4 आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो 4 आने वाला पंखा और 8 आने वाला पंखा है इसमें जरा सा फर्क है। ये जो 8 आने वाला पंखा मैं देता हूं ना, वो उसको ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा। और ये 4 आने वाले की क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है साहब, इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी जोर जोर से। हमने ट्रेन आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था साहब, सफर का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहां मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक बुजुर्ग जैसे एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुजुर्ग ने नौजवान से पूछा क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोलता है बुजुर्ग से, कहले मैं तो साहब जबलपुर जा रहा हूँ। कहले अच्छा, जबलपुर तो भाई मैं भी जा रहा हूँ। कहले अच्छा बाबू जी, जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, जबलपुर में आप कहाँ रहते हैं? कहले जबलपुर में मैं तो वहाँ मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ रहता हूँ। तो बुजुर्ग नौजवान से बोलते, कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह, वहाँ तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता अच्छा बाबू जी, कितनी अच्छी बात है, आप वहाँ पे कहाँ रहते हैं साहब? कहले वहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसके पास में रहता हूं। तो लड़का बोलता कहले क्या बात है बाबू जी, वहां तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं बहुत खूब बात है, वहां आप कहां रहते हैं? कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहां वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ, मैं वहीं रहता हूँ। फौरन बुजुर्ग बोलते कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहाँ तुम रहते वहाँ हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है? तो लड़का बोलता हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो बुजुर्ग बोलता कहले कितना इत्तेफाक, क्या बढ़िया बात है बेटा, कहले मेरे मकान का भी नंबर 115 है। मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने यार ये दोनों बुजुर्ग और ये नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही, सब कुछ वही, लेकिन ये आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया, किससे? बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्गवार, आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्ग कुछ बोले, वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने और मुझसे बोलता है आप चुप रहिए, हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन, जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिक्र नहीं करते किसी को पसंद आए या ना।

0: देखिए तो क्या कहते हैं ये।
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहब, कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और बोली,
2: सर
1: क्या बात है?
2: सर, कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआ जी कह के चिढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रमेश आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआ जी बोलते हैं?
3: नो सर, मैं इनको बुआ जी नहीं बोलता।
1: बैठ जाइए। सुरेश आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआ जी बोलते होंगे। बोले माफा भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोल ही नहीं सकते। बोले भैया, भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते? बोले माँ साहब, ऐसा नहीं बोल सकते, काहे कि सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है। एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, अब उनको क्या मालूम कि सामने वाले साहब अटक अटक के बोला करते हैं। बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हौलदार कंधे में था, एक संदूक दूसरे हाथ में था, एक बंदूक उस कंधे में थी और पोजीशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा, ताओ अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुँच के फ़ौरन सवाल किया, क्यों भाई साहब, वो भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत बजन है भाई। तो अटके लाल साहब, जिनका पूरा नाम अटक लाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया,
4: किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस वो जा रही।
1: साहब भी बड़े गुस्से में आ गए, अटकलाल झपट सिंह जी, और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, एक सज्जन बस में और चढ़े और वो भी बोलने में अटकते थे, और बैठे कहाँ, वो अटकने वाले सज्जन के बाजू ही में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे उन्होंने पुराने सज्जन से सवाल किया,
5: क्यों भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीता, और तुम्हारा नाम क्या है?
6: मेरा नाम भी घसीटा है, मगर उतना नहीं जितना तुमने घसीटा।
1: अपनी श्रीमती जी को लेकर साड़ी की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं,
5: तो भाई साहब साड़ी है?
1: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब साड़ी है, मगर इतनी लंबी नहीं है। अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं। किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक बाज़ार में खुली हुई थी, और चाचा जी की जैसी दुकान में जाते हैं तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन करने के लिए जाने वाले रहते हैं, तो फौरन वो अपने भतीजे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला
7: कि देखो तुम अटक बेटा, तुम यहीं दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा।
1: ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी, कितने की?
5: 7 रुपये, 75 पैसे।
7: क्या भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपये में लेके गया है, 2 घंटे बाद ऐसा बिल्कुल 75 पैसे रेट बढ़ गया, बिल्कुल गलत है ये तो।
5: तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के पहले ही ले गया।
1: हा, हा, हा, हा, हा, हा, हा, हा, हा, एक साहब बहुत ज़्यादा गप हाँकने के शौकीन थे, शिकार के तो शौकीन थे ही, अपने किसी ज़माने की बात लेकर बैठ गए, चार लोगों के बीच में अपना शिकार का वाक्या सुनाने लगे।
8: बोलो साहब, हुआ यूं कि मैं गया जंगल और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है। अब मुझे आया गुस्सा तो मैंने निकाली अपनी बंदूक, जैसे निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक।
1: बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फ़ोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहाँ टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए, आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे, लौट के जैसे ही आए लोगों ने बोला हाँ साहब फिर आगे क्या हुआ, तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो आप शेर का वाक्या सुना रहे थे कि गुस्से में, बोले हाँ फिर हम लोग तो साथ में घूमने गए और बहुत देर बगीचे में बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
9: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
10: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा और डंडा फटकारते हुए बोले, अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है। साइकिल वाला बोला, हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया। सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था, और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था। बार बार चूहा अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है, कहीं और ध्यान दे रहा। मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा, अबे गया। लड़के ने कहा, नहीं मास्टर जी, अभी पूंछ बाकी है।
9: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना।

0: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यारे प्यारे मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर। सुनिए,
1: घटना गांव की है, और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है, और ये पटेल साहब हैं, सरपंच बन गए, पटेल इनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
2: अरे काय पटेलन?
1: हाँ बोलो।
2: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
3: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव, और जी छोटी को भाव तेरहवीं के बाद चौथ को, और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ के दूसरे दिन की बात है। अरे तुम तो यार हर छठ टीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना। हाँ समझ लो, हम तुम्हारा बोला हुआ रहो जब वो से नौकरी को, और तुम गए, तुमने फिर कैंसिल करवा दई, उसके बाद पानी का बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे वो दिन। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तो मतलब बताओगे ये हुआ कब है? डायरी देखो। अच्छा एक मिनट, देख रहे ला कर डायरी, डायरी वायरी उन्होंने देखी, और डायरी देख के बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ। ये समझ लो कि तीज के दूज की बात 22 तारीख को भाव, और आज है समझ लो 20 तारीख, कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन।
2: हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो।
3: क्या समझ लो पहले जैसा नहीं होगा?
2: अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते रहे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन, वो मतलब नहीं होगा।
3: काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को तीसरा जन्मदिन वो काय ना हुआ?
2: तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच।
3: हाँ बात वो तो बन गए, खूब वोट मिले।
2: अब जी जो है गुड्डा जो है, इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए ना, मतलब थोड़ा कादर खड़ी हो जाए, जरा समझा करो बात को।
1: अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि कैसे करेंगे?
3: करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोले वैसा करेंगे।
2: एक काम करेंगे, हम शहर से वो कैंडल वेंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे, और तुम पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल भजवा देना, समझ गए ना, और फिर उसके बाद जो है अपन बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे।
1: बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पटेल साहब शहर चले, और शहर से जैसे ही लौट के आए, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया।
2: पटेलन,

0: पटलन एक मिनट आ रहा है।
1: अरे क्या कह रहे हैं, जल्दी खोलो यार दरवाजा।
0: एक मिनट आ रहे हैं, खेल रहे तुम मतलब ऐसी जल्दी मचा।
1: अरे जल्दी खोलो, मतलब डेढ़ घंटा होगा मतलब खड़े हो तुम, क्या कर रहे हो अंदर?
0: अरे भाई मतलब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ भी माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे मतलब आ तुम खा लिए चलिए।
1: अरे हाँ यार, वो कहो कि मतलब गाड़ी जो है हमारी खराब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकल आओ, अब इंजन बनवा दो, चका पंचर, चका बनवा दो, फिर पीछे चका पंचर, जे माने पूरी नपोर चौदस में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लाओ करो सामान जो है तय छूट गो।
0: हाँ मैं मान लिया, मैं तुम्हारे भरोसे कच्छू नहीं हो सके।
1: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की थी, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
0: तुम्हारे भरोसे रहते जो चार चार ठैया लड़का बच्चा नहीं, तुम आ जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर ली है। अब साहब ये अंदर आए और उन्होंने कहा अब ये बताओ कि अब वो कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाव वाला होगा।
2: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहीं से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछु भाई, और ऐसा नहीं हम भी खूब पढ़े लिखे हैं।
0: अच्छा
2: कहाँ पढ़ गई? नहीं भी प्रौढ़ शिक्षक चल रहा हो आजकल, रेडियो में बता रहे पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए, और एक नहीं एक दूनी दो चौके पाँच छक्के आठ, अलग खूब बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
1: कौन से पढ़ लाई?
2: पंडित जी की ललका पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
1: अरे ठीक है, तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें?
2: केक बना लो।
1: केक बना लो? केक कहाँ से बना लो तुमने?
2: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप सीट देखी थी।
1: क्या देखी रही?
2: रैप।
1: अरे रैप सीट नहीं यार, वो तो तेल होता रैप सीट, रेसिपी रेसिपी बोलते हैं। दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की, यहाँ
2: फालतू बात ना कर तुम बाबू की, यहाँ एक तो दही दो सब अंदर कर लो बाबू खुद हो जाए तुम बिल्कुल एकदम।
1: ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ?
2: जी अजी धरो देखो टीवी में धरो टीवी।
1: अरे बहुत गजब बहुत बढ़िया यार, एक बात बताओ तुम।
2: हाँ वो पूछो
1: जी, इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे? इतना बड़ा इतना सुंदर मतलब बनाया है, ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक, कितना बढ़िया बनाया, कैसे बनाया गया, तुम्हें आइडिया कैसे आया?
2: नहीं कछु नहीं, टीवी में हमने रेप शीट देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने न वो बन है ना कच्छू, कैसे बनाए तो हमने जुगाड़ करो। हम गए कहाँ बाजू में भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम? कहीं फिर हमने उसे कही, हमने भैया 6-8 ठैया फैमिलीस ब्रेडें दे दूँ।
1: कौन सी ब्रेड है?
2: फैमिलीस ब्रेड। अरे फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। हाँ फिर तो बोले फिर हम ब्रेड लाए और ला के ब्रेडों की किनार हमने काट के माहे करी।
1: अच्छा मतलब फेंक दी?
2: हाँ मतलब फेंक दी, अलग कर दी। फिर हमने ऐसी 4-6 ठैया ब्रेड धरी और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड है, फिर चाशनी फिर ब्रेड है, फिर चाशनी। जोर लगाओ।
1: बहुत बढ़िया, फिर क्या करो?
2: फिर कच्छू नहीं, गुड़ की चाशनी माह और डार के अपनो हरी रंग होली को बचो तो वो रंग 2-4 प्रकार के कलर और टेसू को रंग बना लो अच्छी रंग रोगन कर दो झगा झग के। फिर और क्या करो? नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग कर दाई होगी बन गए धरो का। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने, और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, ऊपर से बांध के बढ़िया डिजाइनदार को नाम लिख दो हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा, और 3 नग दो 30 रुपए जरा दे 3 लिख दो, और अपना सिग्नेचर मार दे बस यार के तैयार। अच्छा एक बात बताओ पटेल।
1: हाँ पूछो।
2: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे?
1: हाँ तो तुम कहे को मतलब का कौन नहीं रहो?
2: नहीं वैसे नहीं पूछ रहे हम, दो आदमी खपन जरूर बुला।
1: कौन?
2: एक तो वे पंडित जी।
1: हाँ तो वो तो ठीक है,
2: और दूसरा कौन? वो खवाजा।
1: अरे तुम यार, तुमको पता नहीं कब अकल आएगी।
2: क्यों कब हुआ ऐसे अकल आए?
1: भाई देखो ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहां पंडित जी और वहां कहां मतलब खवासन।
2: भाई ऐसा है कि देखो अब एक दिन का काम तो है नहीं, आज तुमने जो करवा लाओ कल भी आने पर फिर दूसरे तुम फंक्शन करवाओ। उन्हें बोला तो कहें काय जन्मदिन में नहीं पूछो, अब कह रहे हैं कि आ जाओ हैं जज की भाई से फिर पूछो, मतलब पूरे काम है मतलब हमें मतलब खोटे काम हम करवाएं हैं, और मतलब जो अच्छो काम मिलवे दिलवे को तो दूसरो, ऐसा नहीं हो सके भाई।
1: ठीक है तुम देखो एडजस्ट करना, पंडित जी को बुलाओ। पंडित साहब नमस्कार। पंडित जी प्रणाम, चरण छूते। पंडित जी ये जो कार्यक्रम है आपको निमंत्रण दिया है आप आए, बड़े हर्ष की बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई पूजन नहीं होना है, असल में ये हम लोग इस बार पाश्चात्य संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आजकल शहरों में जैसा मनाया जाता है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे। आप आए बड़ा अच्छा हुआ, आप एक काम करिए नाश्ता करिए और ये छोटी सी दक्षिणा है आप रखिए और क्षमा करेंगे आप। अरे नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के आदमी।

0: ये मतलब जब भी आप याद करें ऐसी कोई बात नहीं। पंडित जी ने साहब नाश्ता किया, दक्षिणा ली और चले। लेकिन जो खवासन होती है वो कुछ कुछ जगह पंडित जी से ज्यादा प्रैक्टिकल दिमाग रखती है, और उसका प्रैक्टिकल दिमाग कैसे चला देखिए आपकी नजर, कि उसने पटेलन को हैंडल किया। कहते देखो भाई ये सो हमने खूब शहर में देखे हैंगे करवाए हैं, और हमें ऐसी न बताओ, हमें सब समझ में आते हैं, सो करवाने हैं। एक काम करो, बलगुआ हमने सब खो दे दो, और बलगुआ दे के बाद हमने जो जमा दी थी बिल सब कर दो। अच्छा फोटोग्राफर को बोलो कि नहीं बोलो? फोटोग्राफर को बोला के लाओ। एक लचर पचर फोटोग्राफर उनको भी बुलाया, वो भी बेचारे मतलब ऐसे समय के मारे थे, लचर पचर टाइप ही, मतलब काम उनका बड़ा ढीला ढाला सुस्त, अपने चले आ रहे हैं, अपना साइकिल भी उनकी ऐसी है खट्ट पट्ट घैटर वाली साइकिल। वो साहब आए कैमरा वैमरा लेके, और फिर उसका गुड्डा का बर्थडे मनाना शुरू। केक रखा सेंटर में। हाँ अच्छा जय बताओ कि गुड्डा कौन सा जन्मदिन है? मतलब हम जी समझ लो कि पहलो जन्मदिन भाओ, तो जो दूसरे तीसरो है जे भाई, देखो यहाँ से पहले जन्मदिन में दद्दा ने काम करो, करो नहीं करो, दूसरे जन्मदिन में फिर आपने करो, और जो तीसरे फुआ को नेंग लगा फुआ को बुलाओ। अरे तुम यार उसमें कहाँ फुआ हुआ, हमारे हिसाब चले हम पूरा डायरेक्शन हमारे यहाँ थोड़े ना, मतलब शहर में करवाए हम। फुआ को बुलाओ। अब फुआ को बुलाया गया भाई, केक रखा गया। हाँ चलो जल्दी से, अच्छा एक काम तो करो, का बेक गुड्डा को तीसरा जन्मदिन है, तीन ठैया कैंडल तो धर, तुम समझो का नहीं भाई लफड़ा करवा, क्या होगा तो हमें तो कान में बताओ ना। अरे पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ, और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच कच्छू नहीं, जहाँ हम हैं तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें, कहा जब तुमने जुगाड़ से केक बना, हम कछु नहीं कर सके तुम्हारे लाने, तुमने तो कर। अब भाई देखो, ए बेटा छुट्टू ते आओ।
1: हाँ आओ, तुम एक काम करो, तीन ठैया भपका ले आओ।
0: अब साहब तीन भपके मंगवाए गए, वो मिट्टी के तेल के होते हैं, और उनको जलवाया गया कैंडल पे धर के। पटेल जो खवासन है उनने पटेलन के यहाँ जलवाया। लेस वन है, लेस दो। अच्छा लड़का बच्चा जितने सब पीछे आ जाएं। हाँ और अब ये तो बताओ कि जय सही सब जन केक कटे और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड। अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जय सही समझ लो कि हम तुमसे कहें गुड्डा, तुम पहले केक फूकियो का बेभपकन खो। हाँ पहले एक काम और करो। अब कहा तुम ये काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी कर रहे तुम बिल्कुल, नहीं तो डेढ़ घंटा होगा। भाई पहले फुआ ऐसी आ, तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछावर ऐसी गजा बता रहे हैं, केक की निछावर आ तक देखो, जो गांव काम है केक की निछावर करो, जल्दी करो। उन्होंने भी केक की निछावर हमने आज तक सुनी नहीं, खुटिया के पैसे दो रुपये दे दीजिए। अब दो में काम ना चले, दस को निकाले लूट है, केक की निछावर है ऐसे कम ना ले वहाँ, केक की निछावर करो। केक की निछावर साहब हो गई, और केक की निछावर के बाद दस रुपये ने, हाँ एक माहौर कटोरी ला, माहौर राहौर लगाया गुड्डा को, बाकायदा माहौर टिपकी की लगाई, और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है। उसके पहले उन्होंने कहा अच्छा एक बात और, अब कहा है गो एक बात और देखो ये मैं नेंग के तुमने दस रुपये निछावर के दे, निशानी भी तो दो। काहे की निशानी? भाई देखो अब गुड्डा को जन्मदिन हम याद रखें हैं, तो एक ठैया जो सूट गुड्डा को सलवार हो तुमने छोटे होगा हमारे टुकड़ा को दे दो। कहने लगे फिर कहा चलो दे और पांच कुरे गेहूँ दे, हमने पांच कुरे गेहूँ दे। और बोलो अब गुड्डा तुम एक काम करो, पहले जो भपकन को फूको। तो गुड्डा ने जैसी भपकों को फूका, बेटा गुड्डा ऐसे नहीं अच्छे से, अरे फूंक बे कह रहा थूको नहीं, अब सब खा चल ला हम बुझाए दे रहे। उन्हें लाए खवासन ने और भपका बुझाए अलग करे, देखो बुझ गए। आप गुड्डा एक काम करो, चक्कू से चक्कू तो लाओ। ए बेटा ऐसे हाँ तुम्हारा को नाम
1: लपका?
0: अरे लपका तो लपक के जरा चक्कू लिया।
1: बाऊ नहीं मिल रहा?
0: अरे तो बाजू में देख,
1: बाऊ उनका भी नहीं है,
0: पड़ोस में देख ले,
1: मुझे जीत लो तुम्हारे तो चक्कू नहीं, उनका भी नहीं मिलो।
0: एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश है, हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिया से केक कट रहा है एक नई बात है। और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासन ने कि सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और न चिल्ला तो फिर केक न मिले, जो समझ लो हाँ टाफी बर्थडे भी न मिले। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गुड्डा ने हंसिया उठाया, और बुआ ने पकड़ा, साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं, और उनने बोले हाँ चिल्लाओ।

0: केक को कीमा बना दो ने तुम चटनी निकाल डालो अलग करो अलग करो बस हंसिया खो अरे राम पूरा केक
1: बाबू हमें हंसिया
0: का करो तुम हंसिया
1: नहीं हमें केक लागू है
0: का करो केक को हम वो चाट जी कट जाए हंसिया चाट हो तुम अलग करो
1: नहीं गुड़ तो दे दे
0: गुड़ की हंसिया बात अलग है जो केक को हंसिया है गाड़ी में फंस गया है
1: खैर साहब अब वो हंसिया अलग किया गया अच्छा एक काम करो केक डिस्ट्रीब्यूट करो
0: क्या करो
1: डिस्ट्रीब्यूट
0: अरे यार डिस्ट्रीब्यूट अंग्रेजी मत बोलो अंग्रेज चले गए तुम केक बांटो सबको
1: एक परात में केक धरा गया और परात में केक धर के सबको बांटा जा रहा है और छिवला के पत्ता में धर धर के दिया जा रहा है
2: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हंसना मना है इसका भाग 4। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खनिज संपदा की प्रचुरता और निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस साल अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रदेश के किसानों से कृषि कार्यों की वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक योजना बनाने तथा कम अवधि और कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को विशेष प्राथमिकता देने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीदी में 13% की वृद्धि की है। प्याज का खरीद मूल्य अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भोपाल के भारत भवन में गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी, असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे बरसात स्पेशल पकौड़े। तो कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं उनकी जो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, वो हैं हमारे वृक्ष। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो भविष्य है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों के अंधाधुंध कटाई और घटते हरित क्षेत्र ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संकट के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव हमें प्रकृति से जुड़ने और वृक्षारोपण का संकल्प लेने का अवसर देता है। सखियों, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। आज यह अभियान पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वृक्ष प्रकृति का एक अमूल्य उपहार हैं। वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड

को अवशोषित कर वायु को स्वच्छ बनाते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ वर्षा चक्र को बनाए रखने, भूजल स्तर बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता की रक्षा करने में भी सहायक होते हैं। सखियों, आज शहरों के विस्तार, औद्योगिकरण और विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है, वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। यदि हम समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें केवल पौधे लगाने की नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने की भी सीख देता है। एक पौधा तभी वृक्ष बनता है जब उसे नियमित पानी, सुरक्षा और पर्याप्त देखभाल मिले। इसलिए पौधा लगाने के साथ साथ उसे जीवित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सभी इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घर, विद्यालय, कार्यालय, खेत, पार्क या आसपास के खाली स्थान पर पौधे लगाएं। स्थानीय जलवायु के अनुकूल वृक्षों को प्राथमिकता दें। वर्षा ऋतु पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। तो सखियों, हर वर्ष कम से कम एक पेड़ हम अवश्य लगाएंगे और उसे बड़ा होने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यदि देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा करे तो करोड़ों नए वृक्ष हमारी धरती को हरा भरा और खुशहाल बना सकते हैं।

सखियों, यह तो हम सबको पता है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा होने के बावजूद पीने योग्य मीठा जल बहुत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित जल उपयोग, भूजल का लगातार दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया के अनेक हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम जल बचाने को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बना लें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि और उद्योग सभी जल पर निर्भर है। यदि जल स्रोत सूख गए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझना आवश्यक है। सखियों, जल संरक्षण की शुरुआत घर से ही की जा सकती है। ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें। स्नान के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें, यानी आप मग और बाल्टी का प्रयोग करें। शावर के उपयोग से बचें। कपड़े धोने के बाद बचे पानी से साफ सफाई कर लें। रसोई का पानी गमलों में डाल दें। वाटर प्यूरिफायर से निकलने वाले वेस्ट पानी को इकट्ठा करके कूलर में डाल लें। कपड़े धोने के लिए उपयोग कर लें। कहीं भी कोई नल लीक कर रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम पानी की बचत कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भी जल संरक्षण की बड़ी भूमिका है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धतियां अपनाकर कम पानी में अधिक सिंचाई की जा सकती है। बहनों, आज हमें यह समझना होगा कि जल बचाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की आदत है। छोटी छोटी सावधानियां मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हम आज पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकेंगी। तो जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद बचाएं और जीवन बचाएं।

सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन की। यात्रा केवल स्थानों की नहीं बल्कि अनुभवों, सांस्कृतियों और जीवन को समझने की भी होती है। भारत प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध देश है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, दक्षिण के समुद्र तट, पश्चिम का विशाल मरुस्थल, पूर्वोत्तर की हरी भरी घाटियाँ, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक किले, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य देश को पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि भारत में हर वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। बहनों, हम बात कर रहे हैं पर्यटक स्थलों की। पर्यटन की दृष्टि से हमारी शिवपुरी काफी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवपुरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्था और वन्य जीव संपदा के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे माधव टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में हिरण, नीलगाय, स्यार और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मानसून और सर्दियों में इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हमारे यहाँ सफेद संगमरमर से निर्मित सिंधिया राजवंश की छत्रियाँ उत्कृष्ट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इनके चारों ओर बने सुंदर उद्यान और शांत वातावरण पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। सखियों, शिवपुरी में सांख सागर झील है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित यह झील शिवपुरी की पहचान है। यहाँ नौकायन, पक्षी दर्शन और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। अपने स्वच्छ और ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध भदैया कुंड बरसों से पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है। वर्षा ऋतु में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ब्रिटिश काल में निर्मित एक ऐतिहासिक भवन जिसे जॉर्ज कैसल के नाम से जाना जाता है, यह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ से आसपास के जंगलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सखियों, यहाँ पर तात्या टोपे स्मारक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी तात्या टोपे की स्मृति में बना यह स्मारक देशभक्ति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। धार्मिक महत्व रखने वाला एक स्थान बाणगंगा भी यहाँ है। यह स्थान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। बहनों, शिवपुरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का अनूठा संगम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हरियाली, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और वन्य जीवों की सुंदर दुनिया का अनुभव करता है। यदि पर्यटन के साथ प्रकृति का आनंद लेना हो तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। आइए शिवपुरी के इस अमूल्य धरोहर को देखें, समझें और इसके संरक्षण में अपना योगदान दें।

सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छोटी सी बगिया की। बहनों, बारिश की पहली फुहार के साथ ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे जैसे नई ऊर्जा से भर उठते हैं और प्रकृति का

हर रंग पहले से अधिक निखर जाता है। मानसून का मौसम केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने और अपनी बगिया को नया जीवन देने का सबसे उपयुक्त समय है। यदि आपके घर में छोटा सा आंगन, छत, बालकनी या कुछ गमले ही क्यों ना हो, आप एक सुंदर और हरी भरी बगिया तैयार कर सकती हैं। इस मौसम में मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है, इसलिए पौधों की जड़ें जल्दी विकसित होती हैं और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। यही कारण है कि अधिकांश पौधे मानसून में आसानी से लग जाते हैं। इस मौसम में आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सदाबहार, कनेर जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इनकी सुगंध और रंग आपकी बगिया को महका देंगे। यदि आप औषधीय पौधों के शौकीन हैं, तो तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, करी पत्ता लगा सकते हैं। सखियों, इस समय किचन गार्डन शुरू करने का भी सुनहरा अवसर है। टमाटर, मिर्च, लौकी, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां घर पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। घर में लगाई हुई ताजी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती है। हालांकि इस मौसम में पौधों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। गमलों में पानी जमा न होने दें, क्योंकि अधिक पानी से जड़ें गल सकती हैं। समय समय पर खरपतवार हटाएं, सूखी पत्तियां निकालें और जैविक खाद का उपयोग करें। यदि पौधों में कीट दिखाई दे तो नीम के तेल का छिड़काव करें, इससे पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहनों, बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि तनाव दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। पौधों के बीच बिताया गया समय मन को शांति देता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और परिवार के सदस्यों को प्रकृति के करीब लाता है। तो इस मानसून प्रकृति का आभार व्यक्त करें, अपने घर के किसी छोटे से कोने को हरियाली से सजाएं, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और अपनी बगिया को फूलों की खुशबू से महकाएं। सखियों, जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और रिमझिम बारिश शुरू होती है, वैसे ही गर्मा गर्म पकौड़ों की याद हर किसी के मन में ताजा हो जाती है। इस याद को बनाए रखने के लिए आज हम खाना खजाना में लाए हैं मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। तो नोट कीजिए सामग्री। हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 प्याज पतले स्लाइस में कटा हुआ, 1 आलू, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और साथ ही चाहिए तलने के लिए तेल। मिक्स वेज पकौड़े बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बेसन लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। अच्छी तरह गरम होने पर मिश्रण को हाथ या चम्मच की सहायता से छोटे छोटे भागों में तेल में डालें। मध्यम आंच पर पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर रखें। गर्मा गर्म पकौड़ों को हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ परोसें। साथ में अदरक इलायची वाली गर्म चाय हो तो बरसात का आनंद दोगुना हो जाता है। सखियों, पकौड़ों को अधिक कुरकुरा बनाने के लिए बेसन में आप 1-2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला सकती हैं। और इसी विधि से हम पालक, गोभी, बैगन, पनीर, हरी मिर्च के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप यह पकौड़े बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं और वर्षा ऋतु का आनंद उठाएं। अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटी से अंतराल का।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं रजनी अर्जरिया का गाया ये लोकगीत।

सायदा कुरैशी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं अशोक कसैरा का गाए ये गजल।

0: अशोक कसेरा की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
4: दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा।
5: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं, और फिर लें आनंद इस मौसम का।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
8: पानी की हर बूंद है अनमोल,
9: बहने ना दें इसे बेमोल।
8: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
9: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।

मीडियम वेव 182.32 यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अजनबी।

आनंद बख्शी का लिखा, एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर का गाया, ये फिल्म था का गीत था चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2,86,000

0: पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
5: The significance is immense.
4: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक

0: सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दिन दिन वो मारा ढाला पे है, जैसे पानी में घूरा है ढेला।
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम

0: पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें पराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बाल साथियों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: अपने सभी बाल मित्रों का उनके अपने कार्यक्रम बाल सभा में स्वागत है। और मित्रों, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्चना दीदी। बाल साथियों, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको सबसे पहले क्या क्या दिखाई देता है? सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, रंग बिरंगे फूल, हरियाली से ढकी हुई हमारी धरती, बादलों से घिरा आसमान और रिमझिम बरसती बारिश। कितना सुंदर लगता है ना ये सब। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती इतनी सुंदर क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है साथियों, पेड़ और वन। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, फल फूल देते हैं, गर्मी से बचाते हैं और धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। कई पक्षियों और जानवरों का घर भी यही वन होते हैं। सच तो ये है कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। वे बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देते हैं। और शायद इसी बात को याद दिलाने के लिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव का मतलब केवल पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि पेड़ों से दोस्ती करना, प्रकृति से प्रेम करना और ये संकल्प लेना भी है कि हम अपने आसपास की हरियाली को बचाएंगे। तो बाल मित्रों, इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सब भी एक छोटा सा संकल्प लें, एक पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और अपनी धरती को और भी हरा भरा बनाएंगे।
2: दीदी, अगर हम पौधे रोपते हैं तो हमारी प्रकृति कितनी अद्भुत लगेगी। मैं वाणी एक ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। इतनी मनमोहक है ये प्रकृति, कितनी प्यारी है हमारी संस्कृति। ये हंसते खिलखिलाते सुंदर फूल लाते हैं, हर चेहरे पर बड़ी मुस्कान, सिर उठा के जीना सिखाते हैं। ये नीला आसमान, ये दूध सा सफेद चांद और टिमटिमाते तारे करते हैं रोशन इस अनुपम जग को। ये सारे ये गुनगुनाते भंवरे और रंगीन तितलियां खुशियों से भर देते हैं सबका चंचल मन। पेड़ों को मत काटो और रखो हरा भरा हर वन। पेड़ों से मिलती है शुद्ध वायु, जिससे होती है मानव की स्वस्थ आयु। बरखा रुकने पर आया सतरंगी इंद्रधनुष कर देता है हर कोमल।

0: दीदी, मैं भी अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त कभी जो भूलेगा नहीं। शुद्ध ऑक्सीजन देगा, शीतल छाया में सुखी नींद लाएगा। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, आज को सवारो कल मजबूत रहेगा। दिन के उजाले पर हमें देखो, रात के शीतल छाया पर हमें महसूस करो, हमें दोस्त मानो, हम दोस्त है तुम्हारे, हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं।
1: दीदी, मैं संजना, मैं अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। वृक्ष हमारे कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने प्यारे। समृद्धि की यह है पहचान, नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। कौन कहाँ है किसे खबर है, अंधकार से सबको डर है। प्रदूषण से मुक्त रहें सब, पर्यावरण से युक्त रहें सब। एक लक्ष्य हो यही हमारा, सदा रहे सब इसका ध्यान। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, संग साथी रहते नहीं लड़ते, जीवन अपना सफल बनाते, पर वृक्ष लगाना भूल क्यों जाते। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, हरित क्रांति को खुशियां पाएं। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान।
2: आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं।
3: और साथियों, गीत संगीत सुनने में भी आपको मजा आता है ना?
4: हाँ दीदी।
3: चलिए तो साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बाल मित्रों, आजकल बरसात का सुहाना मौसम है। बारिश की फुहारें, कागज की नाव और गर्मा गर्म पकौड़े सबको अच्छे लगते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
0: लेकिन इसी मौसम में कुछ बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, पेट की गड़बड़ी, डेंगू और मलेरिया। साथियों, यदि इस मौसम में हम थोड़ी सावधानी रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। बाल मित्रों, बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहने, हमेशा साफ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही आप पिए। बाहर का कटा या खुला हुआ भोजन खाने से बचें। खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं। घर और घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें, क्योंकि मित्रों इसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का कारण बनते हैं फिर वो। साथियों, पर्याप्त नींद लें, हरी सब्जी, फल और पौष्टिक भोजन खाएं, और यदि आपको उल्टी, बुखार, खांसी जैसे कुछ लगता है तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएं और डॉक्टर से परामर्श लें। बाल मित्रों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसीलिए जितना आवश्यक पढ़ाई करना और खेलना है, उतना ही जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और अब हमारा कौन सा मित्र हमें क्या सुनाने वाला है?
2: दीदी, मेरा नाम मानसी है। बरसात का सुहाना मौसम है, इसीलिए मैं अपने मित्रों को ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। देखो आए बादल छाए, इंद्रधनुष वर्षा संग लाए, गूंज रही कोयल की वाणी, कह रही धरती बरसो अब पानी। तुम्हें देखकर खिल उठी कलियां, चहकने लगी सूनी गलियां, मस्त मयूरों ने पंख फैलाए। देखो आए बादल छाए, झरने झर झर नदियां कलकल, सबके मन को हर ले पल पल, इंद्रधनुष ने दिए दर्शन, निर्जीवन में दिखे जीवन के लक्षण। कब से इस वर्षा को तरसे, अब तो ये घने बादल बरसे, प्रकृति का ये रूप सुहाना, सबके मन को भाए, देखो आए बादल छाए।
3: मेरा नाम कांची है और मैं अपने मित्र को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह जब आंखें खुली, रिमझिम रिमझिम थी बरसात, उठकर बाहर जब देखा मैंने, दिखी मुझे हरी गीली घास। माँ ने जब आवाज लगाई तो मैं थोड़ा सा अलसाई, ठंडी हवा से मैं थराई, काश आज हो जाती छुट्टी तो घर में हो जाती मस्ती।
4: दीदी, मेरा नाम शुभांगी है और मैं अपने मित्रों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब हम अपने पर्यावरण को साफ रखने की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले कुछ करने से क्या होगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक छोटा सा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स इस्तेमाल करेंगे, तब भी कई सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें क्लोथ बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए। हम जितनी बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज की 30% तक कोल्ड एयर बाहर निकल जाती है और कमरे की वार्म एयर फ्रिज में चली जाती है, उससे वापस ठंडा होने में बिजली बर्बाद होती है। मित्रों, हमें अपने नोटबुक के दोनों तरफ लिखना चाहिए, प्रिंटर पेपर को भी दोनों तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, हमें ब्रश करते समय या फिर साबुन से हाथ धोते समय पूरे वक्त नल खुला नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हमें अपने पेरेंट्स को अपने कमरे और साथ ही पूरे घर में भी एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब लगाने को कहें, साथ ही जब जरूरत ना हो तो उन्हें ऑफ रखना चाहिए। इससे आपके घर का लाइट का बिल भी कम आएगा। टोस्टर, टीवी जैसे उपकरणों को जब यूज नहीं कर रहे हो तब उन्हें अनप्लग कर देना चाहिए।
0: नन्हे साथियों, एक और गीत सुन लिया जाए?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: नन्हे साथियों, कहानियाँ सुनना तो आप सभी को पसंद आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक यात्री जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वो सोचने लगा कि ये सिक्का मेरा तो है नहीं, अब मैं इसे लूँ या ना लूँ पता नहीं किसका ये सिक्का गिर गया होगा। ना तो मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे फेंक भी तो नहीं सकता हूँ क्योंकि ये सोने का है। यही सोचता हुआ वो यात्री जब आगे बढ़ा चला जा रहा था तो रास्ते में माला जपते हुए उसे एक साधु महाराज मिले। तब उसने सोचा क्यों ना इस सिक्के को साधु को दे दिया जाए। यात्री ने जब वो सिक्का साधु को दिया तो मित्रों पता है क्या हुआ? सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, भाई ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो तुम किसी गरीब को दे दो ताकि ये उसके किसी काम आ सके। साधु की ये बात मानकर यात्री आगे चला। उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है जो राजा अपनी सेना को लेकर जा रहा है। तभी उसने एक सैनिक से पूछा, भाई ये राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहा है? तब किसी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा राजा है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहा है। सैनिक की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए तो वो युवक सोच में पड़ गया। फिर वो जो युवक यानी कि यात्री था राजा के रथ के करीब पहुंचा और सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाकर कहा, महाराज इस सिक्के को आप रख लीजिए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतने लोगों को बहुत कुछ बांटता हूँ और ये मुझे सोने का सिक्का दे रहा है। तब राजा ने पूछा, ये सिक्का तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो मित्रों उस यात्री ने कहा, महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा गरीब दिखे उसे ये सिक्का दे देना। तब राजा बोला गुस्से से, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुम्हें गरीब लगता हूँ? तब वो यात्री बड़े शांत भाव से बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर तो नहीं जाते। यात्री की बात राजा को समझ में आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तभी राजा ने यात्री को धन्यवाद दिया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। मित्रों कैसी लगी ये कहानी?
1: बहुत अच्छी।
0: और इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली?
2: दीदी हमने इस कहानी से यह शिक्षा ली कि गरीबी या अमीरी पैसों से नहीं होती, अपनी सोच से होती है। हमें दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा।
3: दीदी मेरा नाम स्नेहल है। बरसात का मौसम है, मैं अपने मित्रों से बरसात से जुड़ी हुई कुछ पहेलियाँ बूझना चाहती हूँ।
0: तो साथियों आप तैयार हैं पहेलियाँ बूझने के लिए?
1: हाँ दीदी।
3: सारी धरती हरी बना दे, कर दे पानी पानी, ऋतु कौन सी बादल संग में, बोलो ऋतु सुहानी, बताओ बताओ।
0: कौन बताएगा?
4: दीदी मैं बताऊँ, वर्षा ऋतु।
3: सही जवाब, कांची ने सही जवाब दिया। दीदी एक और पहेली, कीचड़ पानी में वह रहता, फुदक जमी पर आता, टर टर बोले नाम बताओ, जंतु क्या कहलाता?
0: कौन बताएगा?

0: दीदी मेंढक।
1: स्नेहिल सही जवाब है।
2: हाँ हाँ शुभि दीदी सच्ची में सही जवाब है।
3: दीदी मैं भी अपने मित्रों से एक पहेली पूछना चाहती हूँ। दो अक्षर का नाम मगर, चलते रहना है काम, बड़े बड़े जीवों को इसकी गोद में मिला आराम, बताओ कौन बताएगा।
4: मैं बताऊंगी,
3: नदी। हाँ दीदी स्नेहल ने सही उत्तर बताया।
0: दीदी मैं भी अपने मित्रों से पहेलियां पूछना चाहती हूँ। चढ़े घटा घनघोर भला तब, कड़के चमक डराए, आंधी व बरसात साथ बोले कड़क कपाए, बोलो बोलो बताओ उत्तर।
3: दीदी मैं बताओ, बिजली।
0: हाँ दीदी कांची ने सही जवाब दिया। दीदी मैं अपने मित्रों से एक और पहेली पूछना चाहती हूँ। सबको जीवन देता जल, जल के दाता कौन, वृष्टि उनसे कहो धुआं से गरजे रहे ना मौन,
1: कांची।
3: दीदी पानी।
0: नहीं दीदी
1: स्नेहिल।
3: बादल।
0: हाँ दीदी स्नेहिल ने सही जवाब दिया।
2: एक पहेली मैं पूछती हूँ। रंग रंगीला मन को भाता, धनुष बड़ा आकार, अचरज नभ में धनुष दिखाता, बोलो क्या विचार,
1: कौन बताएगा।
0: दीदी मैं बताऊँ। दीदी इंद्रधनुष।
2: हाँ दीदी सही जवाब दिया शुभि दीदी ने।
0: अपने मित्रों को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी, बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, बच्चे को पानी पिलाने से पहले अच्छी तरह उबाल लें। बच्चे के पापा डॉक्टर से कहते हैं, ठीक है सर, पर उबालने से बच्चा मरेगा तो नहीं।
3: दीदी मैं भी अपने मित्र को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। बारिश के दिनों में एक लड़का छतरी लेकर बाहर गया, उसकी छतरी में एक बड़ा छेद था, पर एक दोस्त ने उससे पूछा, तेरी छतरी में छेद क्यों है। फिर उसका दोस्त बोला, अरे वो छेद तो मैंने ही किया है ताकि बारिश बंद होने पर मुझे पता चल जाए।
0: दीदी मैं अपने मित्रों को एक और चुटकुला सुनाना चाहूंगी। एक बार रिंकू जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर वह रुक गया और बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो हेल्थ ड्रिंक भी पिलाएं।
3: दीदी मैं एक और चुटकुला अपने मित्र को सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की होटल में खाना खाने गई, खाने के बाद बिल का भुगतान किया, फिर अचानक वेटर के पास गई और बोली, ककड़ी के दो टुकड़े रोज आंखों पर रखा करो और रात को पानी में मेथी भिगो कर सुबह छान कर पिया करो। वेटर ने हैरान होकर पूछा, मैडम आप ये सब मुझे क्यों बता रही है। लड़की, मुझसे किसी ने कहा था कि बिल चुकाने के बाद वेटर को टिप जरूर देना।
1: बाल मित्रों आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, चुटकुले सुनाए, कहानी सुनाई, बहुत अच्छी पहेलियां बूझी। और साथियों आप भी अपनी कविताएं, कहानियां, रचनाएं अपने मित्रों को सुनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी के भोपाल केंद्र आकर अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। आप पत्रों द्वारा भी अपनी रचनाएं हम तक भेज सकते हैं। साथ ही आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये भी पत्रों में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम बाल सभा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद,
5: जय।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास कर रहे हैं। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। और प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6:00। 7:21 से 7:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7:30 से खेल की समाप्ति तक। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:20 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:05 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच

अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाला ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमसे हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मंच चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सरवद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
2: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
3: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
2: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन सी रानी इरावती?
2: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
3: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
2: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
2: ओह, इन पुरुषों पर फूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
3: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
2: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
3: परंतु देवी,
2: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
3: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
2: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का, हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वल्का के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गए और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वल्का को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।

0: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए।
1: हाँ।
0: मैं नाक को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जयसिंह को सब समझा दो।
0: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसिंह इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए,
4: आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा
5: है? मर गया। मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
2: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
5: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलू। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े
5: हैं। मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
5: मेरा तो अंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम, तनिक संभालिए, धीरज से काम लीजिए।
5: मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे पास मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
2: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहाँ ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहाँ ले जाओ।
2: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरूं, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
2: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी संगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
2: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत माल्विका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया। और
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।

0: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकलवल का। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र गृह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं लाया।
0: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो। सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
2: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रोट गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रोट गई थी? स्वामी की जय हो।
2: प्रिय,
3: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
2: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है हमारी।
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
2: उत्तर क्या दें बकलावाली का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
4: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ, आ, आ, उसे भगाने चल
5: चले।
4: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
6: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हाल चाल जान लें। और
6: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
6: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।

0: जाएगा।
1: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
0: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
2: ये कृतघ्न बामन,
1: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंबे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज उधर न जाइए।
2: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
0: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
6: महाराज रुकिए।
2: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
6: सखी बकुलावली का ये कैसा है?
2: बकुलावली का, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
1: जो आ गया।
0: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
7: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
2: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
1: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
6: सेकी बकुला वाली का, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
2: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
0: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
2: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के पूजने का उत्सव मनाएंगी।
9: प्रासाद वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीरसेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने भेंट स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं।

0: कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित्र
1: भ्रमण वन उत्सव।

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव,
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।

0: आपके मन की साथ पूरी हो।
1: आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
2: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
1: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
2: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विधर्म से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
2: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
2: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
2: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
1: मालविका, आके देवी, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो, राजकुमारी की जय हो।
1: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
2: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
2: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सिंह को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
1: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
2: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
2: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
5: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
2: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
5: हाँ वही है।
4: प्रणाम भगवती।
5: कल्याण हो।
2: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
5: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
2: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
5: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
6: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
2: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
5: भैया, आप भी तो?
2: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
6: अरे शेर, क्या हुआ? क्या सब लोग एकाएक रुक क्यों गए?
7: जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
6: वही हुआ ना जिसका भाई था, ठाकुर ने खेल दिया है।
8: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
6: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लुहान होकर इधर आ रहे हैं। अरे डाकू ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े। हम असहाय रह गए।
5: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई।

0: जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
1: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
2: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
0: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
2: वो क्या?
0: उसने कहा था, इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही, तो मैं चुप्पी साधे रही। और
3: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
1: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ, मंत्रिपरिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
3: जो महाराज की इच्छा।
2: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
3: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
2: ओह, मेरा जीव इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज, पढ़िए ना ये पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
2: क्या हुआ?
1: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
0: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
2: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
2: जय सेन।
3: आज्ञा देवी।
2: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
3: देवी की जैसी आज्ञा।
2: मालविका, इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में ये प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे, आप लजा क्यों रहे हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
5: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्ध सत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्ध सत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं।

0: नहीं हो सकता।
1: ओके,
0: तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इट सेल्फ एक बड़ी बात थी। और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे, तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं, मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीयपंथी होने वाला हूं या तृतीयपंथी की एक्टिंग करने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है, तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में। इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है, इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड
0: तो
1: जेंडर।
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो, वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी।
1: ठीक है,
0: लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा ची कामा कराई जात तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी।
1: जनाना रोल
0: हाँ,
1: आ रहा है।
0: जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था,
1: कहाँ क्या चल रहा
0: कहाँ
1: है।
0: क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी,
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा,
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट।
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल।
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: 80s वाला दौर जो पूरा
0: हाँ
1: था।
0: हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला, एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे, और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है, और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों
1: और बहुत
0: में
1: खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा। काला नाग, काला नाग
1: हाँ
0: राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल
1: हाँ,
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है।
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ, और
1: अच्छा
0: दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक
1: अरे
0: डायलॉग। तो
1: गजब।
0: बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी। तो
1: बाप
0: इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
0: हाँ
1: हैं जो
0: हाँ
1: कि एक विलेनिश रोल होता
0: रोल
1: है,
0: है।
1: खतरनाक
0: हाँ,
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
0: ओ मैं वो
1: मामला।
0: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों?

0: क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल.
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती, मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है.
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने
1: उस दौर की एक और
0: की।
1: फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि
0: ओ
1: वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट
1: वहां से
0: करेक्ट,
1: वो पूरी यात्रा जो है वो आगे
0: हाँ
1: बढ़ती है.
0: हाँ
1: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
0: करेक्ट,
1: आखिरी
0: आखिरी
1: रास्ता
0: रास्ता
1: फिल्म में.
0: में।
1: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही, और उस
1: बहुत ही
0: समय आमित
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली.
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
1: ऑफ
0: था,
1: कोर्स,
0: कलाकार
1: बिल्कुल.
0: के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट? सब लोगों को ऐसा जा रही हो, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे, मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने
0: सामने।
1: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिव जी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं.
0: पूरी
1: वो
0: तरह से।
1: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है.
0: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: फर्ज निभाओ.
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
1: बिल्कुल.
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म हो गई बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल.
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल
0: तो
1: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है.
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था, तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त अब मैं जितनी
1: अच्छा.
0: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं, हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।

0: हो करेक्ट।
1: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी, और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
0: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
1: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से,
0: अच्छा
1: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
0: जरूरत।
1: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
0: अच्छा
1: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6.5 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग-अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
0: बिल्कुल
1: आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है,
0: ओके
1: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
0: पिताजी की भूमिका अंपायर की।
1: अंपायर की कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो।
0: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते
1: नहीं
0: थे?
1: बिल्कुल नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे,
0: सख्त मनाही।
1: इसलिए सख्त मनाई, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो 2-3 दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर

0: कर पाए, तो लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए
1: अरे अरे अरे
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो
1: हो
0: उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी-कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: श्योर।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन, पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट.
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है, या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो, वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था. मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो
0: जी
1: उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था.
0: अच्छा
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी.
0: वो
1: ओके,
0: उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे. कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है.
0: फिर
1: ओके,
0: वो जवाब बाद में
1: हाँ,
0: आएगा।
1: वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है. तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था. जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई, और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे. एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था. उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था.
0: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल
1: फैमिली
0: रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था, और कॉमेडी. और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ. इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में. चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन,
0: उनको डायलॉग्स
1: जो
0: भी मजेदार मिलते थे।
1: बहुत मजेदार मिलते थे. और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है आप बुरे होते हो, और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता. कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है. तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने वो किया. वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन।
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
0: हाँ,
1: ऐसी काफी सारी फिल्में हैं. और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो मुझे
1: काम
0: वो
1: किया,
0: दृश्य याद आ गया
1: बिंदु जी
0: जिसमें
1: के
0: वो
1: साथ
0: सो रहे हैं
1: काम
0: और वो
1: किया.
0: जगाने आती हैं।
1: हाँ. वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि
0: बिल्कुल
1: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते. जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी. तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी. मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था. फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत. तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: हुकूमत, सड़क,
1: अर्धसत्य
0: है
1: दिखाऊंगी,
0: ना।
1: ये
0: बिल्कुल,
1: सारी फिल्में दिखाऊंगी.
0: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था। वो
1: बहुत ही अलग
0: तो क्या लीग थी वो।
1: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार. एक तो
0: हाँ,
1: इंदु

0: जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और
1: हाँ
0: टाइमिंग
1: हाँ
0: कमाल का है। ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये कुछ
0: ओवर द
1: अलग
0: टॉप नहीं
1: था।
0: थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी इंदु जी का।

0: 4.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यू जोन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम उपस्थित हैं अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे, पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: शाम के 5 बजने वाले हैं, अब मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के तनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं, इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएँ शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। संदर्भ है वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा शिक्षा है अनमोल रत्न, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे अपने गुरुजनों का सम्मान करें विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वे पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभ हैं। मानव जीवन, पशु पक्षियों का अस्तित्व तथा पर्यावरण संतुलन वनों पर निर्भर करता है। वन हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी और अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। वन मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वे वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि और जल आपूर्ति सुचारू रूप से चलती है। यदि वन नष्ट हो जाए तो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और मानव जीवन अनेक संकटों से घिर जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में वनों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। नई सड़कों, भवनों, कारखानों और कृषि भूमि के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। हमें वनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता जैसे विनाश के रूप में सामने आ सकता है। दोस्तों, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी हैं। वन नष्ट होने पर अनेक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सरकार के द्वारा भी वन संरक्षण के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अभियान। किंतु इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम जनता सक्रिय रूप से इसमें भाग ले। समाज के प्रत्येक वर्ग को यह समझना होगा कि वन हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वन मानव जीवन और प्रकृति के लिए अमूल्य संपदा है। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। यदि हम वनों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त जल और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और दूसरों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। वास्तव में वनों का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है। दोस्तों, आइए चलते हैं अब फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन और अनमोल रत्न है। यह व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। इसलिए कहा गया है, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। इसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा की शुरुआत बचपन से ही होती है। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व की नींव तैयार करती है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा, विज्ञान, नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी जाती है। बच्चे इसी अवस्था में अच्छी आदतें को ग्रहण करते हैं और उनके मानसिक और बौद्धिक विकास की शुरुआत होती है। यदि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य में विद्यार्थी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्व भी उतना ही है जितना प्रारंभिक शिक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को विकसित करती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है, जिससे उनकी रुचियों और क्षमताओं की पहचान होती है। इसके बाद उच्च शिक्षा का चरण आता है। दोस्तों, उच्च शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून प्रबंधन, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपना करियर निर्माण करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा वाले युग में उच्च शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए सरकार भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना, अनुशासन का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना और कठिन परिश्रम करके

0: अपने लक्ष्य को प्राप्त करना विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा वास्तव में जीवन का अनमोल रत्न है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को सफल, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। आइए साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय जल है तो कल है पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर।
1: जल है तो कल है, वरना मुश्किल हर पल है। बचा लो पानी, अब भी मौका है, वरना आने वाली समस्या बड़ी जटिल है। जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है। इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। हमारी रोजमर्रा की दैनिक जरूरतें जल से ही पूरी होती हैं। हमें नदी, तालाब, कुएं इत्यादि जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक गतिविधियों में करते हैं। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी की किल्लत देखी जा सकती है। जल को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर जल संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल की भीषण समस्या बन जाएगी। जल को बेवजह नहीं बहाना चाहिए। जल के दुरुपयोग पर मनुष्य को निश्चित तौर पर अंकुश लगानी होगी। हमें अपने प्रत्येक दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। सुबह होते ही ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर कपड़े धोने तक जल की ज़रूरत होती है। घरेलू कार्यों में भी, जैसे भोजन पकाने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कार्यों के लिए संतुलित मात्रा में ही जल का उपयोग करना चाहिए। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझकर उपयोग करना हमारे हाथ में है। बहुत सारे नागरिकों को आदत है कि जल का उपयोग करने के पश्चात वह नल को खुला ही छोड़ देते हैं। यह गलत है। पानी को बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97% पानी सागरों और महासागरों में पाया जाता है। यानी पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, क्योंकि जो पानी महासागरों में और सागरों में भरा हुआ है वो बहुत ही खारा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही पीने के काबिल है। उसमें से भी 2% पानी बर्फ यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। सिर्फ 1% पानी ही नदी, नहर, झरने, कुएं तरल रूप में पाए जाते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि पीने योग्य पानी बहुत कम है। हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए और सभी को इस विषय में जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचा सकें। ज़्यादातर लोग, तकरीबन 70-75% लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। गर्मियों में अक्सर जल स्रोत सूख जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में यह समस्या भयानक रूप धारण कर सकती है। अगर इसी तरह से लोग बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते रहे तो हमें स्वच्छ जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। हमें पानी का संचय करना ही होगा। वर्षा के जल को बचाकर उसे तालाबों में जमा कर लेना चाहिए। वर्षा के जमा जल को ज़रूरत के समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और हम सबको पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक धरती पर पेड़ पौधे होंगे वर्षा उतनी ही ज़्यादा होगी। जल को बचाने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि हर नागरिक को जल संरक्षण हेतु जागरूकता देना, शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना, बर्तन धोते समय भी नल की स्थान पर टब का प्रयोग करना। आपको याद हो तो गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते थे, जिनमें जल एकत्र रहता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग के लिए भी काम आता था। आज गांव और शहरों में तालाबों को पाट कर घर बना दिए गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जल संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। पहले से उपयोग किए हुए जल का भी या फिर थोड़े से गंदे जल का भी सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल छत पर संरक्षण करके उसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें छतों पर भी पानी की टंकियां बनानी चाहिए, जिससे वर्षा का जो जल आए वो टंकियों में भर जाए और बाद में हम उनका उपयोग कर पाएं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। कटते हुए वृक्षों के कारण भूमि की नमी लगातार कम हो रही है, जिससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाई जाए। नदियों के जल में गंदा पानी भी ना छोड़ा जाए, जिससे ज़रूरत पर उस जल का प्रयोग पीने तथा अन्य उपयोगों में किया जा सके। जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित की ज़रूरत है, जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान को अपनी भूमिका अदा करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी निरंतर प्रचार एवं प्रसार की ज़रूरत है, जिससे युवा पीढ़ी समय रहते इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सके। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है, कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इस तकनीक से इतना जल एकत्र हो जाता है कि दूसरे स्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और यहाँ तक कि दूसरे को भी पानी उधार देने में सक्षम हो जाते हैं लोग। तो ये हैं कुछ हमारे जल को बचाने के उपाय। इन्हें अपनाकर हम निश्चित ही अपना कल सुरक्षित कर सकते हैं। लोगों में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि लोग पानी की कीमत को समझ सकें, विश्व के हर नागरिक को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस पर हर वर्ष एक नई थीम रखी जाती है। इसी तरह इस वर्ष की थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का अर्थ है कि पानी का क्या महत्व है, यह कितना कीमती है और हम इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी साफ सुथरे पानी का लाभ उठा सके। पानी ही जीवन का आधार है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे साफ है कि भविष्य में संकट और गहरा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना जल बचाएं एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपनी धरती माँ का अभिनंदन करें।
0: दोस्तों, अभी सुन रही थी आप वार्ता, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार थी शिवांगी तोमर। अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय अपने गुरुजनों का सम्मान करें पर चर्चा करने का। दोस्तों भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। दोस्तों गुरु केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि अच्छे संस्कार अनुशासन नैतिकता और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। वे विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का कार्य करते हैं। गुरु हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों एक अच्छा गुरु अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करता है। वह चाहता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो और समाज तथा देश का नाम रोशन करे। इसलिए गुरु का योगदान अमूल्य होता है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साधन बदल गए हैं लेकिन गुरु का महत्व आज भी उतना ही है। विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों गुरुजनों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों विद्यालय में गुरुजनों का आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। समय पर गृह कार्य और पढ़ाई पूरी करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपने गुरुओं से हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। दोस्तों गुरु हमारे भविष्य के निर्माता हैं। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं वे जीवन में सफलता ज्ञान और अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि गुरु का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। गुरुजनों के प्रति आदर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। सच ही कहा गया है गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु का सम्मान ही सच्चे विद्यार्थी की पहचान है। दोस्तों घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पुलिस?
7: मिस सीमा
6: जी,
7: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
6: क्यों? लेकिन मैं
7: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
7: 1 लाख दो, बच जाओगे।
6: इतने पैसे?
7: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
6: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
8: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

यादों के मौसम। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश ओबेरॉय के आवाजों में फिल्म का गीत, और इसे लिखा सलाउद्दीन परवेज ने, संगीत तैयार किया संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद ने।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आपने सुना महबूबा फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार आरडी बर्मन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: कभी कभी फिल्म का ये है शीर्षक नगमा।
1: कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: आवाजें लता मंगेशकर के साथ मुकेश की।
2: ख्याल आता है।
0: साहिर के शब्द खयाम की धुन।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया ये गीत फिल्म नूरी के लिए। जा निसार अख्तर के बोल, खयाम की धुन, एक बार फिर

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

6:23 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आज सुनिएगा देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत। शाम 7:30 से आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और अब कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुनिए। कल प्रातः 5:55 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। 6:05 पर भक्ति संगीत वंदना चिंतन का प्रसारण प्रातः 6:30 पर होगा। प्रातः 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। प्रातः 6:45 में कृषि सामयिकी में काकोड़ा की खेती पर जानकारी दी जाएगी। 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर। कल सुबह 9:00 लोक रसधार में सुनिएगा ममता चंद्राकर और चित्रा देवी तिवारी के गाए बुंदेली लोकगीत।

आईना ये उर्दू कार्यक्रम सुबह 9:30 पर हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। सुबह 10:20 पर सारंगा आप सुनते हैं और 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे।

शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी। कुछ फिल्मी नगमे शाम 5:33 पर और शाम 6 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल शाम 6:30 पर लोक संगीत में सुनिएगा जगदीश दीवान के गाए बुंदेली लोकगीत। कल शाम 7:21 पर कृषि जगत में आप सुनेंगे कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक के अंतर्गत भेंटवार्ता, मौसम पूर्व प्याज का लाभकारी उत्पादन पर जानकारी देंगे डॉक्टर सचिन प्रकाश नागरे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे कल रात्रि 8 बजे। कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे कल रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत में।

कल रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक में श्रोताओं ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनना ना भूलिएगा। श्रोताओं ये था कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अब हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: کے ساتھ میں جیا بھارتی۔ ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघड़, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Minister of Agriculture and Rural Development Sivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. The government has withdrawn emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, today met a delegation of Bharatiya Mazdoor Sangh, BMS, and affiliated employees organizations to discuss a range of issues relating to government employees, pensioners and administrative reforms. Dr. Singh appreciated the constructive role played by employee organizations in bringing service-related issues before the government through institutional dialogue. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. In Raigad district, 10 to 12 tourists were safely rescued by the police from Adoshi waterfall near Kopoli after the water level suddenly rose. Authorities have advised people to stay away from rivers, waterfalls and other water bodies during the monsoon. In Mumbai, a 63-year-old man was killed after a tree fell on a shop in Kurla during heavy rain this afternoon. The BMC said 64 incidents of tree falls and 8 cases of wall or partial house collapses have been reported across the city. Heavy rain and strong gusty winds have also disrupted flight operations significantly. The India Meteorological Department has issued a red alert in the Konkan districts including Mumbai, Thane, Palghar, Raigad and Ratnagiri. Heavy to very heavy rainfall is also predicted in the ghat areas of Satara, Pune and Kolhapur. In rest of Maharashtra, the weather office has forecast thunderstorms with lightning, gusty winds of 30 to 40 km per hour and extremely heavy rainfall at isolated locations. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims, including a doctor, with 34 men and 15 women. Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has thanked India for assistance in the wake of massive earthquakes. Rodriguez said that Venezuela will be reborn. In a social media post, Rodriguez said the country honors the rescuers from the United Kingdom, Qatar, France, India, Barbados, Brazil and Argentina in recognition of the invaluable work and the solidarity they have shown with Venezuela during these days of sorrow. She said Venezuela will never forget their dedication, courage and commitment. In the ICC Women's T20 World Cup, England will take on Australia in the final at the Lord's Cricket Ground in London today. The match will begin at 8 p.m. Indian time. In Wimbledon tennis, round of 16 matches have been played today. Serbia's Novak Djokovic will face Roman Saifulin of Russia, while top seed Yannick Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki in the men's singles. In the other matches, Hubert Hurkacz of Poland will meet Germany's Johan Lennart Struff. Canada's Felix Oze Aliassime will play Alejandro Davidovic Fokina of Spain in the pre-quarterfinals. In the women's singles, Czech Republic's Karolina Muchova will take on compatriot Barbora Krejcikova. Top-seeded Arina Sabalenka will face Japan's Naomi Osaka. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीत।
3: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खन...

मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया ये देशभक्ति गीत श्रोताओं आपने सुना। फिल्म का नाम देश प्रेमी, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के थे।

0: श्रोताओं, इस गीत में आवाज़ें थी नीति मोहन, विशाल दादलानी और के और साथियों की, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत निर्देशन, फिल्म का नाम था हैप्पी न्यू ईयर। देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिकवायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केंद्र सर्वकारेण मेटा संस्थाये इंस्टाग्राम मंचात बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते, कोंकणे, गोवायां, मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्तसंचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिलावर्गस्य 20-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्यां स्पर्धायां इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरू मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्यन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायामुक्तं यत् 26,000 प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिकवायोः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिकवायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरू मध्यात् द्रवीय प्राकृतिकवायोः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरम् आवश्यकवस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियमः सफलतया प्रभावशीलः अभवत्। मन्त्रिणा अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटिरूप्यकाधिक धनं च प्रदत्तम्। श्रीचौहानेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च ग्रामीणविकासमन्त्रिभिः साकं VBG रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षापि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांशधनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्तनिधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानाम् अभ्यन्तरे एव प्रदातुं शक्येत।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1-2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बालयौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतोभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशां सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः सप्तदिनानाम् अभ्यन्तरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनकसामग्र्यः बालयौनशोषणसामग्र्यः वितरणं प्रसारणं च कश्चन दण्डनीयापराधो वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने सुना देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे आयुषी चौबे के गाए कुछ भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना आयुषी चौबे के स्वर में कुछ भजन। आकाशवाणी के हम जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 7 बजे हैं। हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अब हम रिले करेंगे कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Rasim Al Thani in Doha today. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, External Affairs Minister said the two leaders explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid.

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दी
3: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश भर में मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
1: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1,000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 शांतिपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कर, इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
2: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1,500 से 2,000 करोड़ रूपये का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगड़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में

आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे पेंटर बाबू फिल्म के लिए लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, मनोज कुमार के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत निर्देशन।

इस गीत में किशोर कुमार की आवाज अनुरोध, फिल्म का नाम आनंद बख्शी की कलम का जादू, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुरों में खनकता ये नगमा।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाड़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन्स से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे और प्रदेश भर में मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास

0: इसके विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
1: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला

0: अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कर, इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
2: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2.5 से 3 हजार करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से VBG रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, IT एवं AI आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय

वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे वो बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज साहब को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हम

0: मैं आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: फिर वही बकबक बकबक बकबक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
0: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
0: साहब जी आप सब कुछ भूल गया साहब, वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ गेट आउट।
0: साहब जी
1: तुम अभी तक यहीं हो?
0: साहब
1: क्या है
0: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
0: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
0: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
0: ओहो, यही तो गड़बड़ है साहब। अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे?
1: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
0: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
0: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब, जरा सोचो।
2: बहादुर! अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
1: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है?
1: अरे रीटा, तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी, इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज कोई मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ, और 10 बजे से पहले ही रखो चक्कर।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता।
3: क्या?
1: किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ। यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके?
4: खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटर के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
1: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
4: हाँ।
1: बहादुर, बहादुर
5: आया साहब।
0: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
4: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
0: हम साहब वो आज।
4: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
0: सब कुछ बता दिया?
4: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
0: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
5: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
1: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे, नीचे नहीं,
5: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
5: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
5: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पर बैठ जाओ। साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब। ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
4: सलाम साहब।
1: सलाम।
4: सलाम मैम साहब।
6: सलाम।
4: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है। तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
1: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
5: मैम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
4: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
5: होटल में साहब?
4: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
1: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
0: मैं अभी लाता हूँ साहब।
4: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
1: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
5: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
1: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
4: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
4: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
5: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
4: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
1: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
5: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
1: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
4: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
1: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
4: ना, ना, ना, ना।
1: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
5: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
1: वो तो नजर आ ही रहा।
5: क्या मतलब साहब?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
5: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब। हाँ। कोई नुकस नहीं। हाँ, घर का सब काम काज जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
1: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
5: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
1: हाँ हाँ, क्या बात है?
5: तुम्हारी बात का साहब।
1: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
5: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के, बात ये कि
4: मैं जी तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ साफ बात कर दो।
5: चल तू बोल दे साफ साफ।
1: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
5: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
1: मुझको?
5: जी
1: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
4: साहब? आप शादी कब करेंगे?
1: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
5: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
1: मेरी शादी? क्या मतलब?
5: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
1: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहां करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
4: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को साहब बोल दो, साहब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
5: ठीक कहती है ऋतु, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा साहब माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
0: क्या बात है साहब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
1: बहादुर, तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
3: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
5: बात ये मेम साहब की, मेरा
4: तो पीछे हटो। मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को

0: हाँ बिल्कुल ठीक।
1: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? सब मुख्तसर ये कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले फिर बहादुर की शादी हो।
0: ये भी ठीक।
1: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
0: कभी नहीं हो सकता।
1: क्या नहीं हो सकता?
0: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
1: ये कोई जबरदस्ती है?
2: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
1: क्या मुसीबत है? दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए आप लोग। आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
0: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
3: थैंक यू शाह, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं शाह। अच्छा बहादुर, शादी जब शाह का हो जाए तो हमको खबर देना।
0: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
3: जरूर आएंगे मैम शाह, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम शाह। सलाम मैम शाह।
0: सलाम
3: शाह।
0: सलाम
3: सलाम मैम शाह।
1: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
2: हाँ शाह, जाते हैं शाह।
0: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
1: Good idea. मैं बस गया और आया।
4: विम शाह जी, शाह किधर गया?
0: अंदर कमरे में तैयार होने।
4: अच्छा?
0: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
4: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मैम साहब। हाँ, हम शाह को रोज रोज समझाता था, शाह शादी कर लो, शाह शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था शाह तो, इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मैम साहब?
0: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
4: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुरुख से बुलाया इनको।
0: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
4: ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
0: हाँ,
4: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
0: क्या बात है, वाह बहादुर वाह। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
4: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरि मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डमेलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में। कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल

0: उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा

0: देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों ना हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के फिल्मकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: बजाया गीत आप।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
3: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर। कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

0: कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।
1: ये आंसू मेरे।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज। इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके,
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का चाय गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
3: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
4: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा